आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 16.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 16.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं और प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं मातृ वंदना के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए, आप सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। इसमें आज का विषय है भारतीय परिवार मूल्य। आलेख डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार का है।
1: वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप सांसारिक सुख सुविधाओं ने आज के मनुष्य को आत्म केंद्रित अधिक बना दिया है। कहने को तो सब कहते हैं कि यह युग वैश्वीकरण का है। विश्व के समस्त देश संचार साधनों की सहज उपलब्धि से एक दूसरे के अधिकाधिक निकट आते जा रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि देशों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि आर्थिक दृष्टि से बड़े देश छोटे देशों को समाप्त करने के लिए उद्यत रहते हैं। एक विश्व के निर्माण का यह कौन सा रूप है? विश्व निर्माण की बात करने से पहले राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र निर्माण से पहले समाज निर्माण, तथा समाज निर्माण से पहले परिवार निर्माण करना अनिवार्य होगा। भारतीय संस्कृति का यह मूल तत्व माना गया है कि संस्कारवान तथा मानवीय मूल्यों से युक्त परिवार ही क्रमशः समाज, राष्ट्र और अंततः इस विश्व को रहने योग्य बनाए जाने की मुख्य धुरी है। एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझने की भावना ही परिवार व्यवस्था का मूल मुख्य सूत्र होता है। भारत के शास्त्रों में आदर्श परिवार व्यवस्था के लिए अथर्ववेद के सामनस्य सूक्त में उन मौलिक बिंदुओं की चर्चा की गई है जो भारतीय परिवार मूल्य के मूल आधार माने जा सकते हैं। यह ऋचा इस प्रकार है: सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्या। अर्थात परमपिता परमेश्वर की ओर से आदेश है कि हे गृहस्थ जनों, मैं तुम सबको सहृदय युक्त सामनस्य वाला तथा परस्पर विद्वेष और विरोध रहित करता हूँ। तुम सब एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव रखने वाले बनो और एक दूसरे को ऐसे चाहो जैसे गौ सद्य उत्पन्न अपने बछड़े को चाहती है। परिवार मूल्य की यह आदर्श स्थिति है जहाँ संतान माता पिता की आज्ञाकारी हो, इनके मन परस्पर मिलते हों, पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति मधुर और शांतियुक्त वाणी बोलने वाले हों, भाई भाई से, बहन बहन से और सब परस्पर द्वेष भाव से रहित हों, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हों। परिवार को सुखी तथा जीवन को आनंदमय बनाने वाला आदर्श परिवार का यह वैदिक प्रकरण बहुत विस्तार से वर्णित है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधुनिक बुद्धिजीवी इस परिवार व्यवस्था को आधुनिक जीवन पद्धति में अस्वीकार्य कह सकते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि इस परिवार व्यवस्था के मूल में जिन प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की गई है, वे बिंदु ही परिवार क्या समाज, राष्ट्र और विश्व को कल्याणमय बनाने के मुख्य बिंदु हैं। सहृदयता अर्थात हृदयगत भावना की समानता है। यह तभी होती है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख में दुख और सुख में सुख का अनुभव करता है। रामकथा के उस प्रसंग को याद करें जहां लक्ष्मण को शक्ति प्रहार से मूर्छित देखकर श्री राम बहुत दुखी होते हैं। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर लोगों ने लक्ष्मण से लक्ष्मण का दुख पूछा तो लक्ष्मण का उत्तर था

0: कि आप राम से पूछिए कि मेरा दुख और पीड़ा कैसी थी। हमने राम कथा का पारायण तो बहुत किया, किंतु राम और लक्ष्मण के बीच की पारिवारिक सहृदयता को कितना सीखा। इस सहृदयता का स्वाभाविक परिणाम सामनस्य होगा, अर्थात परिवार के सदस्यों के मन एक दूसरे के प्रति शुभ भावों वाले तथा समान प्रकार के चिंतन से युक्त होंगे। एक दूसरे के प्रति खान पान की उदारता तथा दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान का भाव ही परिवार में सुख और शांति का आधार होता है। इन गुणों का स्वाभाविक परिणाम विद्वेष तथा वैर भाव का अभाव ही होगा। एक दूसरे के प्रति प्रीतियुक्त व्यवहार पारिवारिक सुख शांति का मुख्य आधार बनता है। इन गुणों की स्वीकार्यता में किसी भी आधुनिक बुद्धिजीवी का विरोध संभव नहीं है। आज के भौतिक युग में संयुक्त परिवारों की बातें नई पीढ़ी के लिए यद्यपि परिकथाओं जैसी हो सकती हैं, किंतु नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए धन कमाने वाली शिक्षा के साथ परिवार के बुजुर्गों द्वारा दी गई नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा की उपयोगिता का महत्व कम नहीं हो सकता। वर्तमान एकल परिवारों में भारतीय परिवार मूल्यों की अनिवार्यता को पुनः अनुभव किया जाने लगा है, जिनके अभाव में पिछले लगभग 50 वर्षों से हम अपनी संस्कृति के इस मुख्य बिंदु से दूर होते जा रहे हैं। ये पारिवारिक मूल्य हमारे समाज और राष्ट्र के वास्तविक संरक्षक हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 16.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। श्री रामचरित मानस

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूँ? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

0: अभी आप श्री रामचरित मनस में आज का प्रसंग सुन रहे थे। कलाकार थे अनूप जरोटा। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि समय की। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मादा पशुओं में गर्भपात की समस्या, कारण और रोकथाम। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजीव गौतम।
1: हमारे यहाँ ये देखा गया है कि गर्भपात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसान जब अपनी फसल बोता है और फसल काटने घर लेके जाता है, उसके बीच में यदि उसके फसल पर ओले पड़ जाएं तो जो नुकसान उसका होता है, ठीक वैसे ही गर्भ धारण करने से और बच्चा पैदा होने तक के बीच की स्थिति में यदि कोई भी डिस्टरबेंस हो, या वो बच्चा फेंक दे, या बच्चा उलझ जाए, या कुल मिला के बात यह है कि वो अपना पूरा गर्भकाल पूरा ना करते हुए सामान्यतः जो व्यात की स्थिति होती है वहाँ तक ना पहुँच पाए, उसको हम गर्भपात कहते हैं। गर्भपात ना हो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। दूसरा, इसमें जो मेरा अपना मानना है कि मेरे पास जब पशुपालक आते हैं तो मैं उनकी गंभीरता इस विषय पर कभी नहीं पाता कि हमारा जानवर या इसने गर्भपात कर दिया है तो अब आगे क्या करना चाहिए कि पुनः गर्भपात ना हो, इसके लिए मैंने उनको कभी सजग नहीं देखा। मेरा ये मानना है कि अगर हम गर्भपात या गर्भधारण संबंधी पूरी व्यवस्थाओं को समझ लें तो आराम से हम उस जटिल समस्याओं से बच सकते हैं और अत्यधिक व्यावसायिक रूप से हम दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, या हम अपने घर परिवार के लिए जो हम दूध उत्पादन करते हैं उनको वो पूरी की पूरी उसकी उपलब्धता हो पाएगी। जब कोई भी मादा पशु गर्भ धारण करती है तो उसको निश्चित रूप से अपने शरीर को के आकारिकी को बना रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बना रखने के लिए, साथ ही साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसको स्वस्थ रहने के लिए अत्यधिक आहार की आवश्यकता होगी। आहार अकेला ही आवश्यक नहीं है, उस आहार में वो बैलेंस हो, संतुलित हो। तीसरी चीज, उसके साथ में कुछ ऐसी चीजों का भी समावेश हो जैसे जिनको हम न्यूट्रिशन कहते हैं।

0: हैं, या हम उनको ये कहते हैं कि उसमें जैसे कैल्शियम आवश्यक हो होता ही है, कुछ मिनरल मिक्सचर्स आवश्यक होते हैं, तो इस तरह का मैनेजमेंट, या मैं इसको पूरी एक कॉम्प्लेक्स वे में ना बात करके कि संतुलित आहार उसका हो, पहली चीज़ तो ये बहुत आवश्यक, ताकि जानवर कमज़ोर ना हो। कमज़ोर जानवर में गर्भपात की समस्या एक कारण बनती है। दूसरा इसी के साथ में आता है, इसी रखरखाव संबंधी देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं में, अब रखरखाव की भी बात आती है कि जानवर जो प्रेग्नेंट है, जो ग्यावन मादा है, उसको हमें ऐसी जगह रखना है जहां पर स्वच्छ हवा हो, ठंड का बहुत प्रकोप वहां ना हो, गर्मी से भी उसका बचाव हो, क्योंकि अक्सर कर गर्मी में सन स्ट्रोक से, लू लगने से भी, तेज गर्मी के दौरान कई बार मादा अपने बछड़ों को फेंक देती है, जिसको कहते हैं कि गर्मी होने के कारण से गर्भपात हो गया। कई बार बहुत तेज ठंड लगने के कारण भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। दूसरा, जब हम कहीं जो ग्यावन मादा है उसको बांधते हैं, तो हमारा ये मूल उद्देश्य होना चाहिए कि जहां पर हम बांध रहे हैं वहां केवल ग्यावन गाय या भैंस बांधी जाएं, वहां पर जो दूध दे रही हैं या बिल्कुल दूध नहीं दे रही हैं, क्योंकि वो झगड़ा कर सकते हैं आपस में, और उसके कारण से एक दूसरे के साथ में चोट लगने का भय होता है। जब चोट लग जाती है, ऐसी परिस्थिति में भी कई बार गर्भपात होने की स्थितियां बनती हैं। तो ये तो हुआ एक बिंदु। दूसरा बिंदु होता है बीमारी का। उस बीमारी में भी एक तो रखरखाव और देखभाल संबंधी बीमारी होती है, दूसरी एक इन्फेक्शियस बीमारी होती है जो किसी कीटाणु या विषाणु या रोगाणु से आती है। तो पहला बिंदु वही रखरखाव संबंधी ये है कि जहां जानवर बांधा जा रहा है वहां कीचड़ ना हो, गंदगी ना हो, अन्यथा जब जानवर बैठेगा ग्यावन तो उसके पिछले भाग में कोई भी इन्फेक्शन जाएगा और वो उसके बच्चेदानी तक प्रवेश कर जाएगा, तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, कई बार पिछले हिस्से पर जो उसका जनन केंद्र है वहां पर गंदगी लगी रह जाने के कारण से मक्खी अंडे दे देती है, वहां पर घाव हो जाता है। उस घाव के कारण भी कई बार जानवर उस घाव को ठीक करने के लिए उसमें खुजली या कभी जलन होती है, उसके कारण से अपने जननांगों को रगड़ लेता है, उसके कारण से भी अंदर इन्फेक्शन प्रवेश कर सकता है।
1: कृषि सामयिकी में अभी किसान भाई सुन रहे थे मादा पशुओं में गर्भपात की समस्या, कारण और रोकथाम। इस विषय पर डॉक्टर संजीव गौतम से जानकारी। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार। हिंदी में समाचार होंगे 7:00। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:05 पर सुनिएगा एक लघु वार्ता। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 7:10 पर। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा हमारे केंद्र से 7:20 पर। 7:45 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। समाचार प्रभात 8:00। 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश 8:30 पर। 9:00 सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज के कलाकार होंगे रजनी अर्जारिया और बालकिशन। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा हमारे केंद्र से 9:30 पर। 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे जिले की चिट्ठी। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 10:05 पर। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा हमारे केंद्र से 10:30 पर। दिन में 11 बजे से आप सुन सकेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी संध्या 5 बजे। ये आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति रहेगी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार होंगे।

0: एकत्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणं इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्त्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्ति इति। फुट्बाल् क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिकक्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एक लघु वार्ता, विषय है जल संरक्षण। श्रोताओ, पानी या जल सृष्टि के प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। संभवतः सृष्टि का पहला जीवन शायद पानी में ही संभव रहा हो। श्रोताओ, जल हमारे जीवन में सदा से ही एक अनमोल वस्तु रहा है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सृष्टि के समस्त जीव अपनी प्यास जल के बिना पूरी नहीं कर पाते। तो श्रोताओ, जो इतना महत्वपूर्ण तत्व है, उसे आज हमें संरक्षित और सुरक्षित रखने की जरूरत आन पड़ी है। ये भी बात सही है कि प्रकृति का ये तत्व अब धीरे धीरे अपनी मात्रा में कम होता जा रहा है और इसे सहेज कर रखने की अब हमें आवश्यकता है। श्रोताओं, रोजमर्रा के जीवन में जब हमें अपनी ऐसी आदतों को अब बदलना होगा जो पानी के खर्च को बढ़ा देती हैं, मसलन जब हम सुबह ब्रश कर रहे होते हैं अथवा हाथ धो रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि सिंक में टैप को हम उसी समय खोलें जब पानी की ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसे बंद करके रखें। अक्सर जब घरों में नल की टोंटियाँ लीक करने लगती हैं तो दिन भर उसमें से पानी टपकता रहता है, तो हमें चाहिए कि उसे भी हम तुरंत सही करवाएं और इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। श्रोताओं, अक्सर हम देखते हैं कि वाहनों को, जैसे कि स्कूटर, बाइक या कार को जब हम धो रहे होते हैं तो अनजाने में ही बहुत सारा पानी हम व्यर्थ ही बहा देते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति को भी अब हमें रोकना होगा। जिस दिन पीने का पानी हम भरते हैं तो कई बार पानी भर चुकने के बाद भी लेजम से पानी बहता रहता है, तो हमें चाहिए कि जब हम पानी भर लें तो तुरंत ही नल की टोंटी को बंद कर दें और पानी को व्यर्थ न बहने दें। ऐसे ही जब हम घरों के गमलों में पौधों में पानी डालते हैं अथवा घर के बाहर गर्मियों में जब ठंडक के लिए छिड़काव करते हैं, तो तब भी हम अक्सर पानी को मात्रा से अधिक ही बहा देते हैं। तो श्रोताओ, ऐसी ये छोटी छोटी तमाम बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और जल को ऐसे ही बहा देते हैं। अगर हर व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा तो कई गैलन पानी हम रोजाना बचा सकते हैं, जो कि हमारे भविष्य में काम आ सकता है। तो श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि हम सब इन बातों पर विचार जरूर करेंगे और भविष्य में पानी का संरक्षण करेंगे जो हमारे काम आ सके। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण विषय पर ये लघु वार्ता, आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 12 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 18 जून को बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन व आरती में शामिल होंगी। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी राष्ट्रपति सहभागिता करेंगी। वे 20 जून को शाम को करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक बायोफूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की भी चर्चा की। वहीं फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात की। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए परोपकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा।
1: वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं, उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता

0: तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि तीन जिलों में रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अलनिनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में पराली प्रबंधन के लिए जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
2: सब जानते हैं कि पराली जलाने के कारण न केवल पर्यावरण बिगड़ता है बल्कि धरती माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मित्र कीट मारे जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति घटती है और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से हम भलीभांति वाकिफ हैं। इस बार तय किया कि जब धान की बुआई हो उस समय ही पराली न जले, इसकी योजना बनानी चाहिए। कई कदम हम उठाने वाले।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 21 जून को होने वाली नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। कल मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब रुख करते हैं खेलों की खबरों का। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लालेर रेमसियामी ने गोल दागे। जापान की ओर से एकमात्र गोल हिरामित्सु ए ने किया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें उसका अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा। वहीं T20 महिला विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब अगले सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 34 जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, शहडोल जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कल मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर नर्मदापुरम और जबलपुर जिले में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगरमालवा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक जिले के जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ कलेक्टर ने कल राणापुर में जनसुनवाई में 54 आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जबलपुर नगर निगम में पदस्थ प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च वारंट प्राप्त कर उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 26 जुलाई को 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ होंगी। खंडवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले में पॉली हाउस निर्माण एवं गुलाब तथा अन्य फूलों की व्यावसायिक खेती पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कल कलेक्ट्रेट परिसर गुना में आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर में 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला कल शहीद ज्योति यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। मंडला और डिंडौरी में समान नागरिक संहिता की जन परामर्श की बैठक कल आयोजित की गई और शाहजहांपुर कलेक्टर रिजु बाफना ने कल 41 प्रतिभावान बालिकाओं को 2,05,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। लीजिए आप सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम तराना।

अभी आप सुन रहे थे ताजमहल फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। डीजे कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मुकेश की आवाज में तीसरी कसम फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, मुकेश के कायस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। सुबह के 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना परख कार्यक्रम नमस्कार शिव।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। अजय रनगढ़ की ओर से। श्रोताओं, हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य का निर्धारण जरूर करता है और उसे पाने के लिए भरसक प्रयास भी करता है। कभी हमें सफलता मिलती है और कभी असफलता। अपनी मंजिल को पाने के लिए कभी कुछ लोग हमारा साथ देने के लिए कुछ कदम साथ में तो चलते हैं, लेकिन अंततः हमें अपना रास्ता स्वयं ही तय करना पड़ता है। इस सफर में हमें तमाम तरह की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। जय पराजय, यश और अपयश को भी हमें स्वयं को ही सहना पड़ता है। कभी हम उदास हो जाते हैं और कभी थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन श्रोताओं, हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि लक्ष्य हमारा है, रास्ता हमारा है, तो प्रयास भी हमें स्वयं ही करने होंगे। इस दौर में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें अपना विश्वास और अपना प्रयास बनाए रखना होगा।

और श्रोताओं, इस गीत के बाद आप पढ़ते हैं कुछ समाचारों की तरफ। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 30 जून तक www.dst.mp.gov.in पर पोर्टल पर मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। नजदीकी शासकीय आईटीआई में हेल्प डेस्क के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। श्रोताओं, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना में स्वरोजगार हेतु 10,000 से 1,00,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

अभी तक www.samset.mpeonline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओ, जिले में खरीफ सीजन के लिए 30,971 मीट्रिक टन उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। 1 अप्रैल से अब तक 20,144 मीट्रिक टन खाद किसानों को वितरित की जा चुकी है। ई विकास प्रणाली के जरिए 74,377 किसानों ने खाद प्राप्त की, जिससे वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनी है। श्रोताओं, मछलियों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जिले सहित प्रदेश के नदी और जलाशय क्षेत्रों में 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान मत्स्याखेट परिवहन, विक्रय और विनिमय प्रतिबंधित रहेगा। श्रोताओं, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से कहा है कि आंधी, तूफान और बारिश के दौरान बिजली गुल होने पर धैर्य रखें, सुधार कार्य में जुटे कर्मचारियों का सहयोग करें। कंपनी के मुताबिक बारिश में इंसुलेटर चटकने से फीडर स्वतः बंद हो जाते हैं, तकनीकी कारणों से भी फीडर बंद हो सकते हैं। इन्हें अंधेरे और जोखिम भरे मौसम में लाइन कर्मी मैनुअल रूप से ठीक करते हैं। कंपनी ने सुरक्षा के लिए कहा है कि उपभोक्ता घरों में अर्थिंग और एसीबी स्विच जरूर लगवाएं, गीली जगहों पर वायरिंग न रखें, पशुओं को बिजली के खंभों या स्टे वायर से न बांधें, रास्ते में गिरे या टूटे तारों को बिल्कुल न छुएं। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर उपभोक्ता 15-20 मिनट धैर्य रखें और इसके बाद कॉल सेंटर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। और श्रोताओं, इन समाचारों के साथ ही आज का नमस्कार शिवपुरी का अंक समाप्त करने की अजय रंगड़ को आज्ञा दीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परख कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की, संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा

0: की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित

0: झा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स ऑन ऑल नेशंस टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ग्लोबल मैरिटाइम रूट्स एंड प्रोटेक्ट सीफेयरर्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड थ्रेट्स। Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
4: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
3: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya, and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance, and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics, and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshau Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshau project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
5: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
3: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
6: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagara style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashvani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
7: Mera naam Pankaj Jaria hai.
8: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people able to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
9: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2020.

0: कितना अच्छा आदमी नहीं समझती थी।
1: इसी बात पर जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे। घूमने चलिएगा।
0: नींद
1: नींद

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे काला बाजार फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को पसंद किया था दौलताबाग मुरादाबाद से लिखने वाले श्रोता जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी ने।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे काला पत्थर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को पसंद किया था भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से लिखने वाले श्रोता स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे ने।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कमीने फिल्म का ये गीत मोहित चौहान की आवाज में। इस गीत को पसंद किया था दिल्ली शहर मोरी गेट से लिखने वाले श्रोता कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कन्यादान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को पसंद किया था ग्राम गेंदा टोला, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से लिखने वाले श्रोता वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता ने।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

श्रोता हो, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पोटवाल और मनहर की आवाजों में ये गीत, फिल्म थी कर्मा। इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी ही समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज के कलाकार हैं रजनी अर्जरिया और बालकिशन। पहले सुनिए रजनी अर्जरिया के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत।

0: श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे रजनी अर्जरिया के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। आइए अब सुनते हैं बालकिशन को।
1: हर हर तरह

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे रजनी अर्जरिया और बालकिशन के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे किनारा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ों में। इस गीत को पसंद किया था लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से लिखने वाले श्रोता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत, फिल्म थी कोहिनूर। इस गीत को पसंद किया था रंगनी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले श्रोता दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।

कोरा कागज़। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फरमाइश हमें लिखकर भेजी थी छत्रपति संभाजी नगर से लिखने वाले श्रोता राजेश साबले पाटिल, रायदीप राजेश शशि पाटिल और शीतल राजेश ने।

0: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे लावारिस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फरमाइश हमें लिखकर भेजी थी आदर्श नगर मलोट से लिखने वाले श्रोता राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अब अगर हमसे

0: हमसे, अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अगर हमसे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लैला बहनों फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। सुबह के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुर्खियों में क्षेत्रीय समाचार एकांश। आलेख है विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में गर्मी के मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। इधर जिला प्रशासन और नगर निगम ने बारिश से पहले एहतियात के तौर पर कई आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए हैं, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के केसली से लाडली बहना की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने देवरी क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। डॉ. यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती ने अपने अंदर गौरवशाली अतीत को संजोकर रखा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की सहभागिता और नेतृत्व के माध्यम से आज मध्य प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारत को विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। वर्ष

2026 को प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषक कल्याण वर्ष में सरकार किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचित रकबा पहुंच गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर करने का है। वहीं दुग्ध उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज जरूरतमंदों को आवास, स्वास्थ्य सहित समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और दमोह सांसद राहुल सिंह तथा स्थानीय विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कई जन सरोकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें वृक्षारोपण, योग दिवस की तैयारियां और जन कल्याण शिविरों का आयोजन शामिल है। इनमें प्रशासन और जन प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी हो रही है। सागर जिले में 12 जून से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने सागर संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की विभागीय समीक्षा बैठक जिला सहकारी बैंक के सभागार में बीते दिनों आयोजित की। बैठक में उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में सदस्यता वृद्धि अभियान तथा खरीफ के लिए किसानों को ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा किसानों को कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के द्वारा 14 अप्रैल से 30 जून तक 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से 500 रुपए अंश पूंजी तथा 100 रुपए सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया जाए, जिसे वे 0% ब्याज सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने समिति प्रबंधकों को सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने तथा जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर बीते दिनों कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने और परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा के सिटी कोऑर्डिनेटर मनीष गुप्ता ने बताया कि सागर शहर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सभी तरह के सुरक्षा इंतजामों और मापदंडों के साथ परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया सागर में संचालित 15वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में नर्मदापुरम जोन के पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थियों की परेड संपन्न हुई। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी। आलेख था विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के थे। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की कई चंद कव्वालियाँ।

श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की कई चंद गजलें। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों को फिल्म साधना के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म थी सफ़र। साहिब बीबी और गुलाम, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म के लिए आशा भोसले और साथियों को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संबंध फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आदमी और इंसान इस फिल्म के लिए महेंद्र कपूर को।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। दिन के 11 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: जन्म जन्म के साथी हैं हम, रूठेंगे तो मिल लेंगे, यह कहकर आवारा बादल धरती को बहलाता है। बेमौसम का ये सावन भी कितना भोला भाला है, फेंक कर सागर में कंकड़ अब खुद ही शोर मचाता है। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ आज का फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। हमारे इस कार्यक्रम में डायल करना होता है फोन नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ।
3: नमस्ते नमस्ते मैम, मैं रानी दली छतरपुर से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ सर।
2: जी जी, कैसे हैं?
3: एकदम सही मैम, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, एकदम सही। आप लोग कैसे हैं? पूरी टीम आकाशवाणी भोपाल की सब अच्छी
2: जी
3: है?
2: हम सभी बहुत अच्छे हैं और जो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है उससे बहुत खुश हैं। और
3: जी
2: हाँ, तो ऐसे सुहाने मौसम में अहमद खान साहब आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: गीत तो बहुत सारे हैं, एक गीत चॉइस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग तरह का गीत है वो वाला सुनना चाहते हूँ मैं। नई उम्र की नई फसल फिल्म का नाम है।
2: जी जी जी, नई उम्र की नई फसल का कौन सा गीत?
3: स्वप्न झरे फूल से, नींद चुभे सूल से।
2: जी जी जी,
3: लुट गए सिंगार सभी बाग।

0: के बबूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
1: जी, नीरज जी का लिखा हुआ ये बहुत ही
0: नीरज जी का लिखा हुआ,
1: शानदार
0: जी
1: गीत है।
0: बहुत अच्छा
1: एक
0: गीत है इसके, मतलब इबारत इसकी बहुत अच्छी, शब्दों का जो विन्यास है
1: जी,
0: बहुत शानदार है इसका, मतलब इतनी अच्छी है ना, नीरज साहब ने लिखा है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा गीत है ये।
1: जी जी जी उनकी कालजयी रचनाओं में से एक है ये।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल।

0: हेलो, कौन बोल रहे हैं आप?
1: दीदी सारा सा प्रेम प्यार से नमस्कार।
0: जी
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आलोनी दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, कैसे हैं शारदा जी?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए
0: जी
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो मथुरा तो है, तो वहाँ का तो सुरीला सा मौसम होता है, वहाँ का वातावरण ही बहुत अच्छा है।
1: जी इस वक्त दीदी मंद मंद हवाएं चल रही हैं और खिली खिली धूप है और तापमान भी गिरकर लगभग 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और
0: हाँ,
1: रात में यही तापमान 30 के आसपास बनता है।
0: मौसम जो है वो कुछ खुशनुमा हो चुका है।
1: संदेह बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है।
0: हाँ, और जब कभी छींटे पड़ते हैं बारिश के तो और भी ज़्यादा आनंद आता है, और हम इंतज़ार भी कर रहे हैं बेसब्री से कि मानसून आ जाए, मसावन हो। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बस बरसात की और मानसून की बातें चल रही हैं
0: हाँ,
1: तो एक ऐसा ही गीत है जीवन मृत्यु में।
0: जीवन मृत्यु।
1: जी
0: जी, कौन सा?
1: लता और रफी ने गीत को गाया है।

0: हम पप्पू बोलते हैं, पप्पू सिंह बोलते हैं। बढ़िया जी।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका पूरा परिचय तो दीजिए।
0: ये जिला बांदा तहसील नरेनी से बोलते हैं।
1: जी, कैसे हैं?
0: बढ़िया है दीदी जी।
1: अच्छा,

0: भैया जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: आपसे पहली बार बात हो रही है दीदी जी।
1: अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा पप्पू सिंह जी। और नाम से भी कई बार हम लोग लोगों को पहचानने की कोशिश कर लेते हैं कि हाँ, हमारी शायद बात हुई है ना। आज
0: जी हीरो
1: कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज
0: फिल्म का गीत सुना दीजिए।
1: जी? कौन सा?
0: लोगों से सुना किताबों में लिखा, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
1: जी।
0: और दीदी जी हमारे साथ प्रेमदास बाबा हैं, सुन रहे हैं, फूल चंपाल भी सुन रहे हैं।
1: बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया पप्पू सिंह जी।

0: नमस्ते
1: जी आपका परिचय बताइए।
0: मैडम जी। दमो से बोल रहा है, गिरधारी सेन से। कैसे
1: जी कैसे हैं?
0: हैं आप? ठीक है मैडम जी।
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं।
0: जी मैडम जी।
1: आज फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: मैडम जी, हमको गाना सुनना है ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, और शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली बिगड़े बना दे मेरे काम।

0: नमस्कार मैम, नमस्कार। अम्बेडकर चौक टेगर वार्ड खड़ई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद
1: जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं?
0: मैम ठीक है, हम बढ़िया हैं
1: जी। चलिए परमानंद जी, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मैंने प्यार किया का
1: कौन सा
0: टाइटल सॉन्ग?

0: अरविंद अग्रवाल।
1: जी कैसे हैं अरविंद अग्रवाल जी?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? शहर का नाम?
0: श्रीनगर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश।
1: जी,
0: जी, आज किन मैम से बात हो रही है?
1: आज मैं नीतिका वर्मा हूँ। तो अरविंद अग्रवाल जी, आज आपने फोन किया है, फोन करें गीत सुनने में, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: जी, फिल्म का नाम रहेगा यार आना, छू कर मेरे मन को।

0: बद्री प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैं।
1: जी कैसे हैं बद्री प्रसाद जी?
0: बढ़िया हूँ मैम।
1: जी क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों?
0: इस समय खेती की तैयारी हो रही है मैडम।
1: अच्छा, क्या कुछ लगाएंगे?
0: जी धान।
1: चलिए, तो उसके लिए तो आपको बारिश

0: का इंतज़ार होगा, कब झमझम पानी बरसे।
1: जी जी
0: अच्छा, कार्यक्रम में आपके गीत की कौन सी फरमाइश है?
1: मोहरा का सुना दीजिए मैम, ना कजरे की धार।
0: जी,

0: हरदयाल जाटव, जिला क्षेत्री मत क्षेत्री
1: जी
0: जलासी।
1: कैसे हैं?
0: बढ़िया मैडम जी, आप कैसी हो?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: हमको बढ़िया गाना सुना दीजिए।
1: हाँ बिल्कुल, आज तो आपका ही पसंद का गीत है जो वो आएगा, तो आपका अनुरोध किस गीत के लिए है?
0: हमें सुना दीजिए जुड़वा फिल्म का, दुनिया में आई हो तो लगो गलो थोड़ा थोड़ा जी, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: जी जी जी बिल्कुल, ये गीत आपके रेडियो सेट पर लीजिए।

0: जी मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते। अरे
0: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से। जी
1: सोमत
0: मैं
1: सिंह,
0: बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ जी। हाँ कौन मैडम बात कर रही हैं?
1: मैं
0: जी
1: नीतिका वर्मा। जी जी कैसे हैं?
0: जी जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आप बताइए क्या हाल चाल है।
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सी पसंद का गीत है आपका?
0: आज मुझे आप सुनवा दीजिए, सीमा फिल्म का गीत है तू प्यार का सागर है।

0: कविता गंदारी सतना से।
1: जी कविता जी, कैसी हैं?
0: बढ़िया।
1: और आज आपका कौन सा अनुरोध है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: सत्यम शिवम सुंदरम का आया।
1: कौन सा गीत?
0: ईश्वर सत्य है।
1: टाइटल ट्रैक।
0: हाँ
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका ये गीत, हम आपके रेडियो सेट पर जरूर भेज रहे हैं। और क्या कुछ करती हैं कविता जी?
0: मैं घर में काम करती हूँ
1: और रेडियो हमारे सुनते हैं कि नहीं?
0: बहुत, मैं बचपन से सुनती हूँ,
1: तभी तो हम कह रहे हैं, तो फिर रेडियो भी सुनती हैं आप, बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत दीवानी हूँ मैं रेडियो की।
1: तो ये इसकी दीवानगी ऐसी है ना कि अगर डिस्टरबेंस हो गया किसी दिन, या किसी दिन लाइट नहीं है, या किसी दिन बैटरी खत्म हो गई है, तो फिर आदमी झंझला जाता है कि आज हमें कब मिलेगा सुनने को, है ना?
0: मेरे को मतलब जैसे खाना जरूरी है ना, वैसे रेडियो जरूरी है।
1: चलिए, आपकी ये दीवानगी हमें बड़ी अच्छी लगी। शुक्रिया
0: सवेरे से ही चालू कर देती हूँ।
1: आपने फोन किया, आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का गीत सत्यम शिवम सुंदरम का।

0: याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फर्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। तो श्रोताओं, आपके रेडियो के लिए ये समर्पण, आपकी दीवानगी हमें बहुत अच्छी लगती है। फ़ोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में। आज बस इतने ही फ़ोन कॉल हम ले पाए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर और ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभयारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। ये सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान नागरिक संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा और ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। दूसरी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सबने सुनना चाहा है लम्हे फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत बाजीगर फिल्म से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजें हैं, गुहर कानपुरी का गीत और अनु मलिक का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नवीद खान। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

अगली फरमाइश भेजी है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेत और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आप सबने सुनना चाहा है कोयला फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक साथी साथियों की आवाज़ें हैं और इंदिवर का गीत, राजेश शोषण का संगीत।

1942 आई लव स्टोरी लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा, जिसे आवाज दी है कुमार सानू ने, जावेद अख्तर का गीत और आर डी वर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और विनोद आर्य ने। कोटवा नारायणपुर से बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अनिल कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: कवि हेमंत देवलेकर।
3: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, बलबीर स्वामी शास्त्री जी को अवगत कराता है कि जल्द ही अगर कुछ न किया गया तो मजदूर हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। शास्त्री जी हड़ताली मजदूरों का पक्ष लेकर ठाकुर साहब से बात करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाता। हड़ताल जारी रहती है। बसुमती नारायणी से मुंशीगंज वालों द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना सुनाती है। रोटी के लिए लड़ रहे जानवरों से हड़ताली मजदूर का एक भूखा बच्चा रोटी छीनने जाता है तो जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इससे दलितों की बैठक में दहशत फैल जाती है। यूनियन का सचिव कालूराम नारायणी से मिलता है और उसे ठाकुर साहब के कपड़े धोने के काम पर वापस आने के लिए कहता है। नारायणी सोचकर जवाब देने की बात कहकर उसे टाल देती है। हड़ताली मजदूरों का जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ता है। यशवंत को रोता हुआ भृगु मिलता है। भृगु बताता है कि उसकी लड़की पार्वती भाग गई है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब आगे

0: देख प्रभु, चुप हो जा और सारी बात मुझे तू साफ साफ बता, शायद मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। भृगु,
1: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे यशवंत, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
0: अरे धैर्य रख, हिम्मत से काम

0: लड़कर भी कल शाम से दिखाई नहीं पड़ रहा। साइट पर जाकर पूछा तो पता लगा कि राजा राम और पार्वती को आखिरी बार कल शाम स्टेशन पर देखा गया था।
1: इसका मतलब दोनों कल शाम वाली पैसेंजर ट्रेन से निकल गए। अब भृगु, तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या?
0: नहीं भाई।
1: मुझे तो लगता है कि वर्क साइट पर गश्त लगाने वाले कांस्टेबलों का भी इसमें हाथ होगा। पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। पुलिस पार्वती को जरूर ढूंढ निकालेगी और इस राजा राम का अपराध साबित होगा और उसे सजा जरूर मिलेगी। भिगु,
0: अपराध राजा राम का नहीं, तुम्हारी यूनियन का है।
1: हाँ?
0: यूनियन के नेताओं का है।
1: ये तू क्या कह रहा है भिगु? अरे होश में तो है तू?
0: नहीं हूं मैं होश में। तुम्हारे नारे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम लोग हड़ताल करते हो, घर में औरतें और बच्चे भूखे हैं, और तुम्हारी यूनियन?
1: लेकिन भृगु,
0: यूनियन के नेता खलासी लंगर पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करके सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूनियन के किसी नेता में त्याग की भावना नहीं है।
1: अरे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती भृगु, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देख, सब इंसान एक जैसे नहीं होते।
0: बिल्कुल ठीक कहा तूने, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम लोग सारी जिंदगी कंपनी का काम करते करते बिता देते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा दूसरों की जूठन खाने वाले जानवरों की तरह धुतकार दिए जाते हैं।
1: अब
0: और अंत में परमानेंट होने की आस लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।
1: अरे भृगु, हमारी हड़ताल का मकसद यही है कि हम लोगों के साथ ये भेदभाव खत्म हो, इंसान बराबर हो, कानून सबके लिए समान हो। लेकिन भृगु, ऐसा तब होगा जब हम सब मिलकर यूनियन का साथ देंगे, अपनी एकता को मजबूत करेंगे, मिलजुल कर एक नई क्रांति को जन्म देंगे तब।
0: खामोश यशवंत, खामोश। तुम्हारी यूनियन की वजह से हमारे घर की लड़की भाग गई। आने वाले दिनों में और खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी।
1: अरे भृगु,
0: तुम लोगों की देह में वीर भगत सिंह जैसा खून नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते।

0: खेगी।
1: ठाकुर साहब बीमार क्या हुए, हमारा पीना पिलाना मौज मस्ती का काम सब रुक गया।
0: ये बोतल का इंतजाम तो मैंने कर लिया।
1: अरे बाप, मेरे भाई क्या बात है, पर तू इसे लाया कहाँ से?
0: अरे वो कंपनी का पुराना टायर बेचकर इंतजाम किया इस बोतल का।
1: अरे बाप, लेकिन बाबू भैया बोतल के साथ जब तक अच्छा खाने का सामान ना हो तब तक पीने का मजा नहीं आता।
0: कह तो तू ठीक रहा है रामू, पर अब खाने का इंतजाम कहाँ से करें? अरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची।
1: अरे एक रास्ता है बाबू, एक रास्ता है मेरे भाई।
0: तो बता ना जल्दी से वो रास्ता।
1: क्यों ना हम कंपनी के भंडार में रखी हुई जिलेटिन की छड़ों की चोरी करें, है? और उन छड़ों का विस्फोट हम साई नदी में करें, बहुत सी मछलियां मर जाएंगी और उन्हें भून कर खाने का मजा आ जाएगा।
0: पर रामू, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो?
1: अरे उसकी चिंता मत कर, स्टोर कीपर मेरी जान पहचान का है।
0: अच्छा।
1: अरे पैग दो पैग उसे भी पिला दे।
0: अरे ये तो ठीक है। चल चल चल चल चल चल चल
2: अरे भाई सुनो, ठाकुर साहब से कहो कि राधे श्याम उनसे मिलना चाहता है।
3: कौन राधे श्याम?
2: लेबर इंस्पेक्टर का सहायक।
3: अच्छा अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं, ठाकुर साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं।
4: नमस्कार ठाकुर साहब।
5: नमस्कार।
4: कैसी तबीयत है ठाकुर साहब?
5: पहले से बेहतर है, आओ बैठो।

0: माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपका आदेश मिला तो आपके दर्शन करने चला आया।
1: अच्छा।
0: रामू मामू कह रहे थे कि आपको मुझसे जरूरी काम है।
2: अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि कंपनी के मजदूरों की एक महीने से हड़ताल चल रही है।
0: सुना है इस हड़ताल की चर्चा लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुँच चुकी है।
2: भाई यही तो समस्या है, कंपनी पर लगातार दबाव आ रहा है कि मजदूरों के साथ जल्दी से जल्दी समझौता किया जाए। तुम लेबर इंस्पेक्टर के सहायक हो, घुटे हुए हो, तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता
0: है। मजदूरों की यूनियन का सरपरस्त लोकल लीडर शास्त्री है ना,
2: उसका नाम ललो मेरे सामने। उसी की वजह से तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा।
0: मेरी मानो तो उस शास्त्री को खरीद लो, समझो कि हड़ताल की समस्या से छुटकारा मिल गया।
2: अरे राधे श्याम, वो बिकने वाला नहीं है, नहीं तो कंपनी उसे कब का खरीद चुकी होती।
0: ठाकुर साहब, पीतल के भाव सोना बिकते हुए देखा है कभी
2: है? नहीं तो।
0: लेकिन आपने यही करने की कोशिश की है, आप थैली का मुंह खोली है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
2: क्या तुम शास्त्री को रुपये के सामने झुका सकते हो?
0: लाठ ठपकाते दौड़ा आएगा शास्त्री। मेरी कमीशन देना मत भूलना।
2: अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कमीशन तुम्हें पहले ही मिल जाएगी।
0: ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अभी बहुत से काम करने हैं मुझे।
2: हाँ ठीक।

0: बापू।
1: हाँ बेटा।
0: बापू, मछली खा खा कर मन ऊब गया है, आज तो साग रोटी खाने का मन कर रहा है।
1: अरे जगन्नाथ, मेरा मेरा राजा बेटा। देख बेटा, दलितों की बैरक में 20 दिनों से किसी ने भी अन्न का स्वाद नहीं चखा है। बेटा, लोग तो जंगली फल और पेड़ के पत्ते चबा चबा कर पेट भर रहे हैं। एक बेटा तू है जो साई पर जाकर मछलियां पकड़ लाता है, नहीं तो जगन्नाथ हम भी पत्ते चबाने पर विवश हो जाते। बेटा
0: नहीं बापू, आज तो मैं रोटी या भात ही खाऊंगा।
1: नहीं नहीं, देख जगन्नाथ बेटा, जिद नहीं करते।
0: नहीं बापू, मछली खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है।
1: जगन्नाथ जगन्नाथ, तू तो मेरा राजा बेटा है। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कल साग रोटी जरूर खिलाऊंगा।
0: सच बापू?
1: हाँ बिल्कुल सच।
0: वादा?
1: अरे वादा है बेटा।
0: तो बापू, हाँ, मैं मछली पकड़ने जाऊँ?
1: हाँ हाँ, जा बेटा जा।
0: कल साग रोटी खाने को मिलेगी, कल साग रोटी खाने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
2: भैया बामू।
3: हाँ रामू।
2: साई नदी के तट पर तो हम आ गए। हाँ। अब हमें पानी में जिलेटिन की छड़ का विस्फोट कर देना चाहिए।
3: हाँ। रुक रुक रुक रुक। हाँ। चारों तरफ देख लिए।
2: हाँ।
3: कोई आसपास है तो नहीं?
2: हाँ देखता हूँ।
3: हाँ, देख, देख, देख। हाँ। हाँ। ऐसा ना हो कि हम भर जाए और जिलेटिन चुराने के आरोप में हमें जेल की हवा खानी पड़े।
2: अरे कोई नहीं है, चल फटाफट कर दे विस्फोट।
3: कर दूं?
2: ले ले ले, ले कर,
3: ये ये ये किया मैंने विस्फोट।
2: भैया बाबू भाग, मैंने किसी बच्चे की चीख सुनी है, भागना।
3: तो मैंने भी सुनी है।
2: पुलिस भी आ रही है।

0: क्या हुआ क्या हुआ, ये विस्फोट कैसा था?
1: मैंने भी किसी बच्चे की चीख सुनी थी, किसका बच्चा होगा वो?
2: हाँ जरूर ये हड़तालियों की कारस्तानी होगी।
3: हाँ हाँ उन्हीं का काम होगा ये। अरे अरे देखो तो, अरे यहाँ तो जगन्नाथ की लाश पड़ी है। तो क्या वो चीख इसी की थी? अरे अरे बेटा जगन्नाथ तू तो चला गया पर अपने बाप लीचू को जीते जी मार गया तू। अरे बेटा।

0: लिचू, लिचू।
1: क्या बात है काका?
0: अरे जल्दी कर, मेरे पीछे आ।
1: माफ करना काका, आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, अभी मैं कहीं नहीं चल सकता।
2: अरे सिद्ध ना कर लिचू, तू इसी वक्त हमारे साथ चल।
1: क्या बात है यशवंत, तुम लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है?
2: अरे तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम तुझे सब बता देंगे।
1: लगता है कोई गंभीर बात है। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलता हूँ।
0: अपना जी कड़ा कर ले लीचू, अपना जी कड़ा कर ले।
1: अरे बात क्या है काका, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है?
2: अरे धीरज रख लीचू भाई, थोड़ी देर में तेरी समझ में सब आ जाएगा, बस तू हमारे साथ चल।
0: चल चल चल चल चल।

0: जगन्नाथ जगन्नाथ मेरे बेटे, अरे क्या हुआ तुझे? ये झुलस कैसे गया? अरे कोई बोलता क्यों नहीं बोलता? मेरे जगन्नाथ को क्या हुआ है? अरे क्या हुआ जगन्नाथ?
1: अरे तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा लिचू, नहीं रहा।
0: तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे मेरा बेटा मर नहीं सकता, मर नहीं सकता, नहीं मर सकता मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा तो साग सब्जी खाएगा। उठ उठ बेटा, उठ, चल चल चल चल घर, चल घर चल।
1: लिचू,
0: मैं तुझे साग रोटी खिलाऊंगा, दाल भात खिलाऊंगा।
2: लिचू, हौसला रख लिचू,
1: अपने आप को संभाल लिचू, अपने आप को संभाल।
2: संभाल लीजिए।

0: सुनो जी, कैसी तबीयत है आपकी?
1: नारायण, जिंदगी से निराश हो चुका हूं मैं। अब तो भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे
0: बस बस, आप ज्यादा ना बोलिए, बोलने से आपको तकलीफ होती है, खांसी भी आती है। जरा हिम्मत करके मुन्ने का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ।
1: नारायणी, तू कहीं जा रही है?
0: जी, बड़ी मेहनतों के बाद अस्पताल में सफाई का काम मिला है। अब मुन्ना दूध के लिए नहीं रोएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा।
1: नारायणी, नारायणी तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है तू। अरे भगवान तेरी जैसी पत्नी सभी को दे, सभी को दे।
0: आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। आप, मैं जा रही हूँ, मुन्ने का ख्याल रखना।
2: दरोगा जी आपसे मिलने आए हैं।
3: दरोगा जी मिलने आए?
2: जी।
3: उन्होंने ये नहीं बताया कि काम क्या है?
2: जी नहीं।
3: ठीक है, अंदर भेज दो।
2: जी बहुत अच्छा। दरोगा जी, ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं।
4: अरे यार, रास्ता दे।
3: आइए आइए दरोगा जी, कैसे आना हुआ?
4: ठाकुर, साई नदी में जिलेटिन का विस्फोट करते हुए पुलिस ने कंपनी के दो मजदूरों को गिरफ्तार किया है।
3: क्या क्या नाम है उन दो?

0: मजदूरों का?
1: एक का नाम रामू है और दूसरे का बामू।
0: रामू बामू, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं?
1: उन दोनों का कहना है कि वो आपके आदमी हैं, आप उनकी जमानत लेंगे?
0: मैं उनकी जमानत लूंगा? देखिए दरोगा जी, कंपनी के 4,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं, क्या उन सबका ठेका मैंने ले रखा है?
1: यानी आप उन दोनों की जमानत देने से इनकार कर रहे हैं, यही ना?
0: जी बिल्कुल ठीक समझा आपने।
1: ठाकुर साहब, पुलिस ने कंपनी की वर्कसाइट की भी तलाशी ली है।
0: पुलिस ने वर्कसाइट की तलाशी ली?
1: जी हाँ।
0: लेकिन वो किस लिए?
1: इसलिए कि रामू और बामू का बयान है कि विस्फोटक जिलेटिन की चोरी उन्होंने वहीं से की थी।
0: वो झूठ बोलते हैं दोनों।
1: झूठ वो नहीं, आप बोल रहे हैं ठाकुर साहब।
0: देखिए मुझ पर किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं?
1: आरोप? ठाकुर साहब, पुलिस ने जिलेटिन का सारा भंडार खोजकर सारी विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। वर्क साइट पर भी गैर कानूनी ढंग से विस्फोटक का ढेर लगाने और विस्फोटक की अलग व्यवस्था ना करने के अपराध में कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सुनो, जुर्माना ना भरने की स्थिति में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
0: क्या?
2: शास्त्री जी, कुछ हड़ताली मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है। वो लोग हमें जगह जगह तलाश कर रहे हैं, हमें छिप कर रहना पड़ रहा है।
3: तो मैं क्या करूं?
2: आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी के अधिकारियों से बात कीजिए, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालिए।
4: हाँ शास्त्री जी, मजदूरों को अब विश्वास होने लगा है कि हम लोग कंपनी के समझौता पत्र के खिलाफ नहीं जा सकते। मजदूरों ने कसम खाई है कि वो हम यूनियन वालों को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे।
3: तो मुझसे क्या चाहते हो तुम?
2: पिछली बार हम लोग आपके साथ कंपनी के अधिकारियों से नहीं मिले थे, लेकिन लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, हमें अधिकारियों से मिलना पड़ेगा।
3: सुनो, तुम लोगों को नेता समझना शर्म की बात है।
2: क्या?
3: शर्म की बात? अरे भले ही हड्डियां चूर चूर हो जाए, देह से मांस सड़कर गिर जाए, लेकिन मजदूरों को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। हड़ताल जारी रखो, समझे तुम?
4: लेकिन शास्त्री जी, अब हमारा मजदूरों के बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, अगर उनके हक में हमारे पास कोई फैसला हो तो अलग बात है।
3: हाँ, देखो मैं कुछ दिन के लिए मुंशीगंज से बाहर रहूंगा।
4: जी
3: भाई, तुम लोग तो जानते ही हो कि दूर दूर से उधर डालमऊ की तरफ से भी लोग मुझसे मिलने सलाह लेने आते रहते हैं।
2: हाँ, हाँ। हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए शास्त्री जी, अब हम लोग क्या करें?
3: हाँ, एक काम करो
4: जी,
3: इस बार तुम लोग खुद मिलने जाओ।
2: हम लोग?
3: हाँ हाँ भाई, तुम लोग।
4: ठीक है शास्त्री जी,
2: हम लोग
4: मिलने जाएंगे। चलो बलबीर।
5: माँ,
6: हाँ बेटा,
5: आज मैंने भरपेट खाया।
6: क्या खाया बेटा?
5: कच्चा मांस।
6: क्या?
5: बहुत दिनों का भूखा था ना, इसलिए।
6: क्या कच्चा मांस?
5: हाँ माँ।
6: कहाँ मिला?
5: वो मुंशीगंज के कसाई है ना।
6: हाँ?
5: वही फेंक कर गए थे।
6: बेटा थोड़ा मांस मेरे लिए भी ले आता तो मेरा भी पेट भर जाता।
5: क्या करता माँ, वहाँ इतने सारे भूखे लड़के थे कि पल भर में मिट्टी में सना मांस चट कर गए।
6: बेटा कल तू बाकी लड़कों से पहले पहुँच जाना। हाँ, और जितना भी मिले सब उठा लाना, कम से कम 2-1 दिन के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा।
5: हाँ,
6: आगे भगवान मालिक है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे तू उल्टी क्यों हो रही है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा बेटा बोल ना, बोल बेटा, तू चुप क्यों हो गया है? हे भगवान, अरे इसके तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। हे भगवान,
4: अरे क्या हुआ?
6: करूं मैं?
4: ये लड़का जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है?
6: देखिए यशवंत बाबू, मेरे बेटे को जाने क्या हो गया है।
4: एक मिनट, अरे इसकी तो धड़कन रुक गई है।
6: हाँ?
4: इसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी
6: है। ऐसा लग गए ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बेटा।
4: देखिए, देखो, रोने से अब कोई लाभ नहीं।
6: बच्चा।
4: अब इसे जलाने का इंतजाम करो।
6: नहीं,
4: लेकिन जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होगी। लकड़ी के लिए पैसे कहाँ से हैं? ऐसा करो, इसे साई नदी में ही बहा दो।

0: तू आ गई नारायणी?
1: जी।
0: क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी आने में?
1: डॉक्टर साहब, मेरे पति की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कर, मेरे साथ आ।
1: जी।
0: आज बहुत काम है तेरे लिए, सारे अस्पताल की अच्छी तरह सफाई करनी है तुझे, समझ गई तू?
1: जी जी।
0: चल आ इधर।
1: जी, चलिए। ये क्या डॉक्टर साहब, इतने सारे बीमार बच्चे? ये सारे बच्चे तो दलित बैरक के हैं ना?
0: हाँ, इन बच्चों ने कसाईयों द्वारा फेंका गया सड़ा कच्चा मांस खा लिया है, इसी से इनकी ये हालत हुई है।
1: ओह,
0: देख नहीं रही, उल्टी कर करके सारे अस्पताल का फर्श गंदा कर दिया है। देख, ये सारे फर्श की सफाई तुझे ही करनी है।
1: डॉक्टर साहब, ये बच्चे बच तो जाएंगे ना?
0: देख नारायणी, कई तो मर चुके हैं, और जो जो बचे हैं ना, उनका मरना भी तय है।
1: क्या?
0: हाँ नारायणी,

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। और अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

बहनों, आप और हम व्यस्त तो सभी रहते हैं, फिर चाहे वर्किंग वुमन हो या हाउस मेकर। खुशी की बात तो ये है कि इसी व्यस्तता के बीच समय निकालकर आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। तो सभी श्रोता सखियों को अपनी दोस्त वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। घर परिवार, दोस्त पड़ोसी, रिश्तेदार और हमारा कार्यस्थल, इन सभी से जुड़ी जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब होता है हमारा डेली रूटीन। उसी के अनुसार हम अपने काम पूरे करते हैं। यूं तो हमें इन कामों में मजा भी आता है, पर कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि क्या हमारा सारा जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। घड़ी की चलती सुइयों के साथ हम सबके लिए काम करते हैं, पर इसके बीच में हमारा निजी समय कहाँ है? दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों के बीच जब हम दब से जाते हैं तो लगता है कि हमारा क्या व्यक्तित्व है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसमें हमारी खुशी है। तब अपनी खुशियों के लिए हम जो समय निकालते हैं वो मी टाइम कहलाता है। मी टाइम यानी हमारा वो निजी समय जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हमारे वो निजी पल हैं जिन्हें हम स्वयं निर्धारित करते हैं, ये कब होने चाहिए और किसके साथ। सखियों, मी टाइम केवल समय बिताना ही नहीं है, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं जो हमें समझने चाहिए। इसके द्वारा हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को रिचार्ज करते हैं, यानी ये दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक है। नई नई चीजों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी खुद को अपग्रेड करते हैं। हम रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि इस समय हम शांत भाव से हर पल को जीते हैं। बाहरी चीजों से अपना ध्यान हटाकर स्वयं पर ही केंद्रित करते हैं, ना सिर्फ अपनी खूबियों को तलाशते हैं बल्कि अपनी खामियां भी ढूंढते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि खुद से ही खुद को मिलवाते हैं। मी टाइम स्पेंड करने के सभी के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने विचार हैं। कई महिलाओं ने अपने ग्रुप बना लिए हैं, फिर चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों, एडल्ट वुमन या 50+, वे सभी मिल बैठती हैं, कुछ गेम खेलती हैं, चाय कॉफी की चुस्कियों के साथ ना सिर्फ निजी बातें शेयर करती हैं बल्कि हर टॉपिक पर खुलकर चर्चा होती है। अब तो मिलने का स्थान केवल घर या पार्क ही नहीं रहा, कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट, बोटिंग क्लब भी आज बहनों की गपशप से गुलजार दिखाई देते हैं। सखियों, आप अपना मी टाइम कैसे गुजारती हैं? यकीनन कुछ नया करती होंगी या फिर कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे, क्योंकि खुद से खुद की मुलाकात भी जरूरी है, वरना एक दिन आईना पूछेगा, बता तेरा नाम पता। अपने निजी लम्हों में हम इस कदर डूब जाएं कि दिल फिर कोई ख्वाहिश कर बैठे।

0: बहनों, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। कितने ही तीज त्योहार, पर्व, तिथि, मेले, समारोह आदि हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। भले ही हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, उच्च वर्ग या निम्न स्तर के हों, महिला हों, पुरुष हों या अन्य, सभी में कहीं ना कहीं प्रेम भाव तो रहता ही है। यही प्रेम और विश्वास हमारे देश की परंपरा है, भारत की पहचान है। इसी सार्वभौमिक सोच पर आधारित वार्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वार्ता का शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और मानव एकजुटता। आलेख श्री जवाहर प्रजापति का है। वाचन कर रही हैं आभा गुप्ता। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: उपनिषद में कहा गया है, इकट्ठे चलें, एक जैसा बोलें और हम सबके मन एक जैसे हो जाएं। ये भावना प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसलिए यहाँ राजा और रंक सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ के तत्व चिंतकों ने बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र अथवा च प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहें, सब निरोग या स्वस्थ रहें, सब भद्र दिखें और विश्व में कोई दुखी ना हो। वसुधैव कुटुंबकम एक व्यापक मानव मूल्य है। व्यक्ति से लेकर विश्व तक इसकी व्याप्ति है। गरज ये कि संपूर्ण विश्व इसकी परिधि में समाहित है। ये वैयक्तिक मूल्य भी है और सामाजिक मूल्य भी, राष्ट्रीय मूल्य भी है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी, राजनीतिक मूल्य भी है और नैतिक मूल्य भी, धार्मिक भी है और प्रगतिशील मूल्य भी। और यदि इन सब का एक शब्द में समाहार करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये मानवीय मूल्य है। इस मूल्य को सच्चे मन से अपनाए बिना मानवता अधूरी है, मनुष्य अधूरा है, धर्म और संस्कृति अधूरे हैं तथा राष्ट्र और विश्व भी अधूरा और पंगु है। यह मनुष्य की, मानव समाज की, राष्ट्र की अनिवार्यता है। यदि हम विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना को आत्मसात करना ही होगा। वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र द्वारा भारतीय मनीषियों ने जिस उदार मानवतावाद का सूत्रपात किया उसमें सार्वभौमिक कल्याण की भावना है। यह देश कालातीत अवधारणा है और पारस्परिक सद्भाव, अंतः विश्वास एवं एकात्मवाद पर टिकी है। स्व और पर के बीच की खाई को पाट कर ये अवधारणा स्व का पर तक विस्तार कर उसमें अभेद की स्थापना का स्तुत्य प्रयास करती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को राष्ट्रवाद का विरोधी मानने की भूल की जाती रही है। जिस प्रकार उदार मानवतावाद का राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा शाश्वत तो है ही, यह व्यापक एवं उदार नैतिक मानवीय मूल्यों पर आधारित भी है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। सहिष्णुता इसकी अनिवार्य शर्त है। निश्चय ही आत्म प्रसार, स्व का पर तक विस्तार, स्वयं को और जग को सुखी बनाने का साधन है। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप समय और दूरी के कम हो जाने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रसार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। किसी देश की छोटी बड़ी हलचल का प्रभाव आज संसार के सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। फलतः समस्त देश अब ये अनुभव करने लगे हैं कि पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाईचारे के बिना उनका काम नहीं चलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, निर्गुण शिखर सम्मेलन, दक्षेश, G15 आदि वसुधैव कुटुंबकम के ही रूपांतरित नाम हैं। इन राजनीतिक संगठनों से ये तो प्रमाणित होता ही है कि विश्व के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राष्ट्र पारस्परिकता और सह अस्तित्व की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तथा इन अवधारणाओं के बीच वसुधैव कुटुंबकम में निश्चय ही विद्यमान थे। यजुर्वेद के एक मंत्र का सार है कि व्यक्ति द्वारा ये कामना की गई है कि संसार के सभी लोग मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं, हम सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से ही देखें। सच तो ये है कि संसार को देखने की हमारी मूल सोच और दृष्टि यही रही है। व्यक्ति, समाज और देश भी इसी दृष्टि के अनुसार व्यवहार करता रहा है, इसलिए हम विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन दर्शन के चंद आधारभूत सूत्रों में ये एक महत्वपूर्ण सूत्र रहा है। इस तथ्य को साहित्य और दर्शन में भिन्न भिन्न भावों और भाषाओं में व्यक्त किया जाता रहा है और इसे हम अपने व्यवहार में ढालते रहे हैं। आज पूरा विश्व जिन परिस्थितियों से दोचार हो रहा है उसमें हमारी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सर्वाधिक उपयोगी प्रतीत होती है। तकनीक ने फासलों को कम किया है, लेकिन दिलों के फासले तकनीक कम नहीं कर सकती। उसके लिए आवश्यकता है कि भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे को समझने और निकट आने की। ये निकटता समय के साथ गहरी होती है और एकजुटता में परिवर्तित हो जाती है। हमारी भावनाएं साझा होने लगती हैं, हमारे सुख दुख एक लगने लगते हैं, हमारी जरूरतें एक दूसरे की हो जाती हैं। इस तरह जो दुनिया बनती है वह ऐसी दुनिया होती है जिसे हम आने वाली पीढ़ी को सौंपते हुए संतुष्ट भी होते हैं और गर्वित भी। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध और शत्रुता का भाव शून्य हो। ये पूछा जा सकता है कि ऐसी दुनिया व्यवहार के धरातल पर कैसे संभव है। प्राणी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण प्रेम के साथ द्वेष, प्रगति के साथ ईर्ष्या और संयम के साथ क्रोध को भी अपना ही लेता है। ये ठीक भी है क्योंकि ये तो मानव के स्वाभाविक गुण हैं। तो भी उनका परिमाण इतना अल्प होगा कि समाज पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। आमतौर पर मानव समाज में जो भावना, जो अंतर संबंध होंगे वो प्रेम और सद्भाव के ही होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक सुंदर, कल्याणकारी और श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए मानव एकजुटता समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: अभी आप सुन रही थी वार्ता, वाचन स्वर था आभा गुप्ता का और आलेख था श्री जवाहर प्रजापति का। सखियों, हमें आशा है कि ये वार्ता आपको पसंद आई होगी। तो अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। सखियों, अभी बात चल रही थी कि मी टाइम को हम कैसे स्पेंड करते हैं। ये तो सबकी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। अगर आपकी रुचि योगा करने में है तो यकीनन आप स्वयं को तनाव रहित एवं हल्का महसूस करती होंगी, साथ ही ऊर्जावान भी। ये हम सभी जानते हैं कि योग की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। ये हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा है और उनकी लंबी आयु, तन मन, चमकती त्वचा का राज भी है। योगा प्राचीन काल से किया जाने वाला वो अभ्यास है जो शरीर का लचीलापन बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। बहनों, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर सभी को योगा करने की आदत डालनी चाहिए। भले ही शुरुआत 10 मिनट से करें और निरंतरता कायम रखते हुए इस समय को बढ़ा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि योग करने के कितने ही फायदे हैं, बस आलस कर जाते हैं। योग से रक्तचाप सुधरता है, यानी दिल मजबूत होता है, मांसपेशियों के लचीलेपन को बढ़ाता है, यानी पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बस रेगुलर यदि हम योगा करें तो फिर शादी और पार्टी में बढ़िया सा डांस भी कर सकती हैं। छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं को दूर करने में भी योग बहुत ही हेल्पफुल है। तभी तो हमें रोज थोड़ा सा समय इसके लिए जरूर निकालना चाहिए। योगा करने से हमारी एकाग्रता में भी सुधार आता है। प्राणायाम और ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप याददाश्त और फोकस बेहतर होते हैं। तो प्रॉमिस कीजिए कि डेली योगा करेंगी। अगर पहले से ही कर रही हैं तो आप बधाई की पात्र हैं, समझदार हैं, अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। अगर हमें सुबह टाइम नहीं मिलता, हम शाम का समय फिक्स कर सकते हैं। और आजकल गर्मियों में तो हर पार्क में आपको योगा करते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए लोग समूहों में दिख जाएंगे, तो फिर हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। निरोगी रहकर अपने वजन को नियंत्रित करते हुए कमनीय काया के मालिक बनकर खुशी से इतराइए और अपनी तारीफ सुनिए।

बहनों, गर्मी के तेवर तो आप देख ही रही हैं। ऐसे में जब वातावरण का तापमान बढ़ता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को काम करने के लिए अब अधिक पानी की जरूरत होती है। तो हमें गर्मियों में भरपूर पानी पीना चाहिए। बहनों, गर्मियों में हमें अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी में यदि हमारा खान पान गलत हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इसका नतीजा होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हमें हरी सब्जियां, पालक, चौलाई आदि का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इनमें पानी तो होता ही है, साथ ही होता है आयरन और कई सारे विटामिन। बहनों, लौकी में भी पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। डिहाइड्रेशन के लक्षणों को अनदेखा ना करें। डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं जैसे हल्का सिर दर्द होना, जुबान का सूखना, आँखों में भारीपन होना, पेशाब में जलन होना या कभी कभी इसका रंग गहरा पीला हो जाना, उल्टी जैसा मन करना, ये सभी डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। तो इन्हें पहचाने और खूब पानी पिएं। और हम ठंडा दूध पी सकते हैं, छाछ का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी शरीर को किसी भी तरह पानी की पर्याप्त मात्रा दें। प्यास लगने का इंतजार न करें, हर एक घंटे में एक गिलास पानी पीना है। साथ ही हमें 20 किलोग्राम वजन पर एक लीटर पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी या ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का हम सेवन कर सकते हैं। ये शरीर के पानी की आपूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही कोशिकाओं के इलेक्ट्रोलाइट स्तर को भी बैलेंस रखते हैं। बहनों, ये भी समझते हैं कि तरल पदार्थों के साथ साथ कुछ ऐसे ठोस भोज्य पदार्थ भी हैं जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, जैसे खीरा, इसमें पानी के साथ साथ सिलिका भी होता है। तरबूज, इसमें पानी तो भरपूर होता ही है, साथ ही इसमें पोटेशियम भी रहता है। आप कच्चा नारियल खा सकती हैं, कच्चे आम का पना बनाकर पी सकती हैं। बाहर की प्रिजर्वेटिव डले हुए चीजों को अवॉइड ही करें। अल्टीमेटली अपने आप को स्वस्थ रखें, खूब पानी पिएं, योगा करें, मी टाइम में स्वयं को और बेहतर बनाने की कोशिश करें और ऐसे ही सुनते रहिए गीत संगीत और रोचक जानकारियों व मजेदार बातों से भरपूर आपका और हमारा अपना कार्यक्रम महिला सभा। सखियों, कार्यक्रम के समापन का समय हो चला है, तो लेते हैं आपसे विदा। अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है, जिसमें आप सुनेंगे निरंजन कुमार शर्मा के गाए लोकगीत। पहला हास्य गीत गारी और फिर लोक भजन।

0: रंजन कुमार शर्मा के गाए लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आज आप सुनेंगे पीयूष झा की गाई कुछ।

पीयूष झा की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत मोहब्बत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार और साथियों की, इंदिवर का गीत और संगीत बप्पी लहरी का।

एतबार। लीजिए सुनिए, इस फिल्म का गीत आवाज आशा भोसले और भूपिंदर की है, हसन कमाल का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह यहां 22 जून तक बैतूल, ओंकारेश्वर और जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और श्योपुर के प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व आरती करेंगी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम NHDC गेस्ट हाउस में करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति अगले दिन 19 जून को ओंकारेश्वर से सुबह अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 20 जून को शाम में जबलपुर एयरपोर्ट आएंगी। राष्ट्रपति 21 जून को प्रातः जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मायगांव की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्वर्गीय काटजू के परिजन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश नाथ काटजू केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले समर्पित सेनानी थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी काटजू ने विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश और समाज की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉक्टर यादव ने यहां मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है, ताकि पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
1: के नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है, तो वहां बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। साथ ही साथ वहां रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। भारत सरकार इस बात

0: के लिए कृत संकल्पित है कि बच्चों के एग्जाम निर्विघ्न संपन्न हो जाए।
1: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव को कल साप्ताहिक जन सुनवाई में 137 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने मौके पर ही निराकरण योग्य प्रकरणों का संबंधित अधिकारियों से समाधान करवाया। पन्ना जिले में भी आज महाराणा प्रताप और बुंदेल केशरी महाराज छत्रसाल जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
3: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
2: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
5: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
2: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
6: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
2: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
7: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
8: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
9: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में एक विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोट राज से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा। बलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेरु पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान एवं ग्राम पहुरुआ से रामकुमार लोधी, गोविंद यादव और उनके सभी साथियों ने इन्होंने सुनना चाहा है फर्स्ट लव लेटर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, अनजान का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

करियादंड हट्टा जिला बालाघाट से हुलास राम कटारे, नारेश्वरी कटारे, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर रही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट। आप सबने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ कभी कभी फिल्म का ये नगमा। साहिर के लिखे गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। आप सबने पसंद किया है चांदनी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत शिव हरी का।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश भेजी है गोलाघाट बक्सर से विजय केसरी, गौरीशंकर केसरी, शंभू केसरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। समीर के लिखे गीत को शुरू में ढाला है नदीम श्रवण ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियों में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको 7:21 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 11:15। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शाम की सभा में कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर

88.3 मीटर अर्थात 1513 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित गुनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं और गुजरात के वडोदरा ग्रामीण में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। यह मुलाकात पार्टी के कुछ सांसदों के पार्टी बदलने की राजनीतिक अटकलों के बीच हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर समेत 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। और अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुत

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो इस समय आपके पास भी है, मेरे पास भी है और दुनिया के हर इंसान के पास है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम और आप उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। उसे बचाने के लिए कोई तिजोरी नहीं बनती, न उसे खरीदने के लिए कोई बाजार होता और ना ही उसे कमाने के लिए कोई नौकरी मिलती। और सबसे बड़ी बात, एक बार वह हमसे दूर चली जाए तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी उसे वापस नहीं ला सकता। और यही कारण है कि जीवन की सबसे महंगी चीज़ें अक्सर वे नहीं होती जिन्हें हम खरीदते हैं, बल्कि वे होती हैं जिन्हें हम सहजता से पाकर उनकी कीमत भूल जाते हैं। तो आइए आज कुछ मिनट इसी विषय पर विचार करें। जीवन में सबसे महंगी चीज क्या है जिसे हम अक्सर मुफ्त समझ लेते हैं? कुछ लोग कहेंगे समय, कुछ कहेंगे स्वास्थ्य, कुछ कहेंगे प्यार, विश्वास या रिश्ते। लेकिन सच तो यह है कि सभी अनमोल हैं। लेकिन इन सबके पीछे भी एक और चीज छिपी है जो इन्हें अर्थ देती है, और वह है किसी का ध्यान और उपस्थिति। श्रोताओं, कहते हैं कि समय, रिश्ते और अपनों की मौजूदगी की कीमत तब समझ आती है जब वे हमारे पास नहीं रहते। तो दोस्तों, आज ही इसी चर्चा को शुरू करने से पहले एक ऐसे गीत को सुने जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पल कितना अनमोल।

तो श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के विषय की। आज के युग में हम पैसे की कीमत जानते हैं, इसलिए खर्च करने से पहले सोचते हैं। लेकिन किसी का समय, किसी का विश्वास या किसी का ध्यान हम बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको ध्यान से सुनता है, आपकी बातें समझने की कोशिश करता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, तो वह वास्तव में आपको अपने जीवन का एक हिस्सा दे रहा होता है। वह अपने जीवन के वे क्षण आपको सौंप रहा होता है जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक बूढ़े पिता अपने बेटे का घंटों इंतजार करते हैं। बेटा सोचता है कि उसने अपने पिता के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छा घर दिया, सुविधाएं दी, पैसे दिए, लेकिन पिता को शायद केवल आधा घंटा ही चाहिए था, जिसमें बेटा बिना मोबाइल देखे उनके साथ बैठकर बातें करता। वह आधा घंटा किसी भी महंगे उपहार से अधिक मूल्यवान था। इसी तरह हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवारों और प्रियजनों को यह कहकर टाल देते हैं कि अभी समय नहीं है। हमें लगता है कि वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच यह भी है कि कोई भी हमेशा नहीं रहता। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हमें हर दिन बराबर मात्रा में मिलता है, लेकिन उसकी कीमत हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा से पहले का वह आधा घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक मरीज के लिए जीवन का एक दिन अनमोल होता है, और किसी माँ के लिए अपने बच्चे के बचपन का एक पल पूरी दुनिया से अधिक कीमती होता है। हम अक्सर स्वास्थ्य को कभी मुफ्त समझ लेते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ रहता है, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। देर रात तक जागना, गलत खान पान, तनाव और लापरवाही को सामान्य मान लेते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, तब समझ आता है कि अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति के लिए स्वस्थ जीवन कितना बड़ा धन है। इसी प्रकार विश्वास भी जीवन की सबसे महंगी चीजों में से एक है। विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में केवल कुछ क्षण। फिर भी लोग अक्सर झूठ, स्वार्थ और अहंकार के कारण उसे खो देते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि खोया हुआ विश्वास वापस पाना कितना कठिन है। श्रोताओं, एक और चीज है जिसे हम अक्सर मुफ्त समझ लेते हैं, और वह है अपने प्रिय लोगों की मौजूदगी। हम सोचते हैं कि माँ हमेशा रहेंगी, पिता हमेशा रहेंगे, दोस्त हमेशा मिलेंगे, लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। एक दिन ऐसा आता है जब फोन की संपर्क सूची में नंबर तो रहते हैं, लेकिन उन नंबरों से आवाज नहीं आती। तब समझ में आता है कि सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं थी, बल्कि वे लोग थे जो हमारे जीवन में मौजूद थे। और इसी एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करती हुई कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। वक्त की कीमत क्या है, ये वक्त ही सिखाता है। जो पल बीत जाता है, वो लौट कर कहां आता है। हम समझते रहे उसे मुफ्त की सौगात, मगर वही तो था जीवन का सबसे बड़ा साथ। और इसलिए जीवन हमें बार बार एक ही पाठ सिखाता है कि जिस चीज को हम हमेशा सामान्य समझ लेते हैं, वही सबसे असाधारण होती है। अब मैं अपनी ही बात को एक अलग और शायद थोड़ी असहज लगने वाली कल्पना के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए कि आज रात सोने से पहले आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे। दरवाजा खोलने पर सामने जीवन खड़ा हो और कहे, मैं तुम्हें कल सुबह फिर से वही सब दूंगा जिसके लिए तुम आज आभारी हो। अब सोचिए, कल सुबह आपके पास क्या बचेगा? क्या आपका परिवार रहेगा? क्या आपका स्वास्थ्य रहेगा? क्या आपके दोस्त रहेंगे? या क्या आपका समय रहेगा? या फिर केवल वही चीजें बचेंगी जिनके लिए आपने आज धन्यवाद कहा था? यदि यह सच हो जाए, तो शायद आज रात हम अपने फोन पर कम और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएंगे। शायद हम शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक व्यक्त करेंगे। शायद हम यह समझ पाएंगे कि जीवन की सबसे महंगी चीजें कभी खरीदी नहीं जाती, वे केवल महसूस की जाती हैं। तो श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से संगीत विराम का। सुनिए यह गीत और फिर हम लौटते हैं अपनी बातचीत।

गीत के इस छोटे से विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे थे उस कला की जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। अक्सर दोस्तों, जब हम जीवन की सबसे महंगी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में धन, संपत्ति या कीमती वस्तुओं का विचार आता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन की कुछ सबसे अनमोल चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बिना किसी मूल्य के प्राप्त करते हैं, और इसलिए उनकी कीमत भी अक्सर नहीं समझ पाते। समय, विश्वास, रिश्ते और अपनापन, ये सब ऐसे खजाने हैं जिन्हें हम कई बार मुफ्त समझ लेते हैं। इन्हीं अनमोल उपहारों में एक और चीज है जो आज के दौर में धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है, और वह है किसी को सुनना। सुनना केवल कानों से शब्द ग्रहण करना नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं, अनुभवों और विचारों को समझना भी है। शायद यही कारण है कि कहा जाता है, हर जवाब से पहले एक सुनवाई जरूरी है। तो आइए आज बात करते हैं सुनने की उस कला की, जो न केवल रिश्तों को मजबूत बल्कि जीवन को भी अधिक संवेदनशील और सुंदर बनाती है। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी से अपने मन की बात कह रहे हैं। शायद आप किसी परेशानी में हैं, या फिर बस चाहते हैं कि कोई आपको समझे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बात पूरी होने से पहले ही सलाह देने लगे, अपनी कहानी सुनाने लगे या फिर मोबाइल में व्यस्त हो जाए। ऐसे में आपको कैसा लगेगा? शायद यही कि आपकी बात सुनी नहीं गई, केवल शब्दों को सुना गया। आज के समय में बोलने वालों की कमी नहीं है। हर किसी के पास अपनी राय है, अपने तर्क है, अपने अनुभव है। लेकिन जो चीज धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है, वह है सुनने की कला। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। बातचीत शुरू होते ही हमारा मन जवाब तैयार करने लगता है। सामने वाला क्या कह रहा है, उससे ज्यादा हमें इस बात की चिंता रहती है कि हम क्या कहेंगे। परिणाम यह होता है कि शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं। एक दिलचस्प बात है, प्रकृति ने भी हमें दो कान और एक मुंह दिया है। शायद यह संकेत है कि हमें बोलने से दो गुना ज्यादा सुनना चाहिए। लेकिन व्यवहार में अक्सर इसका उल्टा हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को सलाह की नहीं, केवल एक श्रोता की आवश्यकता होती है। जब कोई अपना दुख बांटता है, तो वह हमेशा समाधान नहीं मांग रहा होता। कई बार वह केवल यह चाहता है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे। और सच मानिए, किसी को ध्यान से सुन लेना भी एक प्रकार की मदद है। दोस्तों, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे भी सुनने का असली मतलब समझाया। एक दिन कॉलेज में हमारी क्लास चल रही थी, सर ने एक सवाल पूछा और मुझे लगा कि इसका जवाब तो मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने तुरंत हाथ उठा दिया, लेकिन जैसे ही मैं बोलने लगी, सर मुस्कुराए और बोले, प्रश्न पूरा तो सुन लो। पूरी क्लास हंसने लगी और मैं भी थोड़ा संकोच में पड़ गई। दरअसल मैंने सवाल का आधा हिस्सा ही सुना था और जवाब देने की इतनी जल्दी थी कि बाकी बात सुनने का धैर्य ही नहीं रखा। उस दिन की बात तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन सर की एक बात मेरे मन में रह गई। उन्होंने कहा, बहुत से लोग इसलिए गलत नहीं होते क्योंकि उन्हें जानकारी कम होती है, बल्कि इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि वे सुनते कम हैं। उसके बाद मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि कई बार घर में, दोस्तों के बीच या कॉलेज में भी सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही मैं अपनी राय बताने लगती थी। यानी मैं सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुन रही थी। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह धैर्य का काम है, सम्मान का काम है। जब हम किसी को पूरा सुनते हैं, तो हम उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी बात हमारे लिए कितनी मायने रखती है। और तभी मुझे लगने लगा कि जीवन में अच्छे जवाब देने से पहले अच्छी सुनवाई करना सीखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए जवाब देने से पहले सुनिए और सुनने से पहले समझिए। और दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक

दोस्तों, समय की रफ्तार तो कभी नहीं रुकती, लेकिन उसके बीच बिताए गए प्यार, विश्वास और अपनत्व के पल ही जीवन को अर्थ देते हैं। हमारे अपने कार्यक्रम युववाणी के माध्यम से आपके साथ हमारा भी कुछ ऐसा ही प्यारा सा रिश्ता बन गया है, और यह रिश्ता यूं ही खूबसूरत बना रहे इसका प्रयास हम लोग हमेशा करते रहेंगे। दोस्तों, आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और अब वक्त हो गया है लेने का आपसे विदा। कल नई बातों के साथ और नए गीतों के साथ फिर होगी आपकी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी प्रगति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
3: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आशिक फिल्म का नगमा, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत समीर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ये दिल आशिकाना फिल्म का नगमा। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। गीतकार हैं समीर और तर्ज बनाई नदीम।

ये दिल आशिकाना फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आइए आपको सुनवाते हैं दिल चाहता है फिल्म का नगमा। आवाज है शंकर महादेवन की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, तर्ज बनाई शंकर महादेवन ने। तो आइए सुनते हैं दिल चाहता है फिल्म का ये नगमा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार हैं समीर और तर्ज बनाई आनंद मिलंद ने।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
3: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
4: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इंडिया ए ने ट्राई नेशन सीरीज के करो या मरो मैच में अफगानिस्तान ए को 101 रन से हरा दिया है। दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में 320 रन का टारगेट चेज कर रही अफगानिस्तान ए 36 ओवर 5 गेंद में 218 रन पर ऑल आउट हो गई। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए 403 रन का विशाल लक्ष्य तय किया है। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 154 और ईशांत किशन ने 125 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के

0: भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है। तराने नए पुराने कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। लीजिए सुनिए अजय अतुल के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, आवाजें सोनू निगम और नीति मोहन की फिल्म का नाम ब्रदर्स।

0: विविध भारती,
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा

0: गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
1: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
0: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
3: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, द ग्रेट गैम्बलर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत आर डी बर्मन का, रचनाकार हैं आनंद बख्शी।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सलीम सुलेमन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए श्रेया घोषाल का गाया गीत बोल, अमिताभ भट्टाचार्य के फिल्म का नाम बैंड।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये था कार्यक्रम तराने नए पुराने। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम होगा 7:00। इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग ये कार्यक्रम सुनेगा, समय होगा 7:45 पर।

रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका मेन्यू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट रूपांतर मुरली मनोहर जोशी, निर्देशन मुख्तार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता मोतीलाल पर। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। ढलती जाए रात, रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में कल आप सुनेंगे श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार होंगे वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। कल आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, साथ ही इसका पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम में। समय होता है सुबह 7:00। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:15 पर। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण सुनेगा दोपहर 2:00। नए फिल्मी गाने हम रोज लेकर आते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। कार्यक्रम होता है चित्रलोक।

आज के फनकार। कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन पर। इसका प्रसारण होता है सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। 11 बजे लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। 1 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

सदाबहार नगमे लेकर आएंगे 2:30 पर, दोपहर 3 बहने सुनेंगी सखी सहेली कार्यक्रम, शाम 4 पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी मेरी मकान मालकिन, तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा। रात 8 हवा महल में नाजनीन की लिखी झलकी सुनिएगा पुरातत्व के तत्व, आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:00। 10 छाया गीत प्रस्तुत करेंगे राजुल अशोक, ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11:00।

अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचना सुनी। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। अब सुनिए आक्रोश फिल्म का भजन वंदना खांडेकर के स्वर में। वसंत देव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अजीत।

0: गज तत्वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप

दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य तीन आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य चार तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार तथा शेष तरब के तार दांड के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दांड के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है। किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

0: अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे।
1: गज तत्वाद्य गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।

0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की DTH सेवा, DD डायरेक्ट।
2: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
3: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
1: डीडी डायरेक्ट,
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा कल से होगा शुरू। इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा समान नागरिकता संहिता UCC विधेयक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को विकसित भारत के आधार स्तंभ बताया। और मानसून की रफ्तार थमी, प्रदेश में अगले सप्ताह दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल इंदौर पहुंचेंगी। इसके बाद वह बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। शनिवार 20 जून को श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। सोमवार 22 जून को श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। डॉक्टर यादव ने आज विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे, इसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से कुल 207 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें करीब 188 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के सामाकोटा बैराज के लोकार्पण सहित क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों, महाविद्यालय एवं स्कूलों के नवीन भवनों तथा नवीन विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि सामाकोटा बैराज उज्जैन जिले में जल संरक्षण को नई ऊर्जा देगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और खेतों को नई संजीवनी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही बैठक रणनीतिक से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके राजनयिक संपर्क तथा प्रमुख मंचों पर वैश्विक नेताओं के साथ उसकी सक्रिय बातचीत को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा पटना में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली

0: 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, तो नंबर एक, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है, 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है, 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं, 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप, लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है।
1: उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए समाज को कुछ उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक पौधा अपने बुजुर्गों के नाम अभियान आज से शुरू हुआ। बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भव्य आम महोत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून को भंवर ताल गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल पर बैठे सगे भैया बहन खान नंदिनी की राम राम। देखो भैया, बहुत सी ऐसी योजनाएं अपने शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, जी को लाभ अपने भैया ले रहे हैं। भैया, ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और ये अपने भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत लोकप्रिय टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। वह जहां में 18 से 50 वर्ष तक को कोई भी नागरिक मात्र 436 रुपए प्रति वर्ष को प्रीमियम भरकर 2 लाख तक को जीवन बीमा कवर प्रदान करत है। और ये भैया योजना की मुख्य जो विशेषताएं हैं बुझे हैं कि ये योजना में आयु सीमा जोन है वो 18 से 50 वर्ष के बीच के बैंक या डाकघर खाता धारक जाके पात्र हैं, और भैया ये 55 वर्ष की आयु तक जारी रहते हैं। वार्षिक प्रीमियम जोन केवल 436 रुपए प्रति वर्ष, यह राशि जोन है वह हर साल आपके खाते में ऑटो डेबिट हो जाते हैं। भैया ये एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस है, कवर प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक मान्य होते हैं और जाए हर साल रिन्यू कराने होते हैं। और भैया जाके लाने आप कोनो भी नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर जिते आपको बचत खाता हुए जे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। भैया योजना से जुड़े विस्तृत नियम और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करवे के लिए आप भारतीय जीवन बीमा निगम की वेबसाइट देख सकते हैं, या अधिक जानकारी व आवेदन के लिए इंडिया पोस्ट को जो पोर्टल होते बाय चेक कर सकते हैं। भैया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दावा क्लेम करवे के बाद बीमा को पैसा आम तौर पर 30 से 40 दिनों के भीतर नॉमिनी के बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। तो भैया ये योजना के लिए आवेदन करके अपने जो भैया हैं भी लाभ कमा सकते हैं। भैया देखो, चर्चा हम आगे करेंगे, अब सुनते हैं कछु संदेश।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: देखो भैया, अपन सभी के जीवन में स्वच्छता को बहुत महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य के लाने साफ सफाई को हो वो बहुत जरूरी है। और देखो भैया, अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। भैया अपने आसपास साफ सफाई रखें। और देखो, गंदगी सभी के लाने हानिकारक होते हैं। साफ सफाई हम करके रखें, आसपास साफ सफाई रखें, घर को साफ करें। और भैया जन जो मौसम जोन है वहाँ साफ सफाई रखो बहुत जरूरी है। ये मौसम मक्खी मच्छरन से बचवो बहुत जरूरी है। जो मौसम में बीमारियों से बचवो बहुत जरूरी है। जैसे भैया बहुत सी बीमारियां जो मौसम में होते हैं, डेंगू है, मलेरिया है, ये मौसम में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जाके बचाव के लाने हमें सावधानियां बरतो वो बहुत ज़रूरी है। भैया सबसे पहले डेंगू और मलेरिया से बचाव को सबसे बड़ा प्रभावी तरीका मच्छरों के प्रजनन को रोको है, और बिनसे बचवो है। भैया ये डेंगू को मच्छर जोन है वो साफ पानी में पनपत है। अपने आसपास साफ सफाई रखें, और साफ पानी इकट्ठो बिल्कुल भी न होने दें। खासकर कूलर है, गमलों की प्लेट है, पुराने टायर, बाल्टी और इन सब में पानी इकट्ठो बिल्कुल भी न होने दें। भैया साफ सफाई हर जगह रखें, कूलर व पानी की टंकियों को हर हफ्ते में कम से कम एक बार खाली करके सुखाएं और साफ करें। यदि घर के आसपास नाली या गंदा पानी इकट्ठो होते तो बामे मिट्टी को तेल या कीटनाशक डालें और आसपास साफ सफाई रखें। और भैया मच्छरों के काटवे से बचें, सबसे बड़ी बात अपन बचाव करवो और संग में भैया अपने छोटे छोटे बच्चन को बचाव करवो बहुत ज़रूरी है मच्छरन से। काहे कि भैया सबसे जल्दी शिकार होते हैं अपने छोटे भैया बच्चा। शरीर को पूरी तरह से ढकवे वाले कपड़े पहने और भैया मच्छर भगावे वाली क्रीम को इस्तेमाल करें, प्राकृतिक स्प्रे नीम को तेल को इस्तेमाल करें। संग भैया सोते समय मच्छरदानी को प्रयोग करें। और आजकल देखो ये ऑल आउट आ गए हैं और ऐसे जो हैं भी अपन लगा के रखें जैसे मच्छर नहीं आते। भैया डेंगू या मलेरिया के लक्षण जोन हैं जैसे विलक्षण होते हैं वे हैं तेज बुखार, जोड़न में दर्द, ठंड लगनो, सिर दर्द जैसे जोन हैं ये लक्षण होते हैं। बहुत तेज सिर दर्द होते हैं और तेज बुखार आते हैं। और भैया ऐसे जैसे भी लक्षण दिखें तो तुरंत ही अपने स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें। हमेशा घर में व घर के आसपास साफ सफाई रखें। मच्छर जोन है रुके भय पानी में ही ज़्यादा पनपत है। जो नालियां हैं अपने घर के आसपास बिना ढक कर रखें, खुली नालियां बिल्कुल भी ना छोड़ें। और भैया डेंगू से बचाव के लाने घरेलू उपचार सोइए। सबसे आसान इलाज जोन है वह कच्ची तुलसी की पत्तियां चबानो, जिनके अब भैया देखो हर घर में तुलसी को पौधा होते हैं तो ये अपन जी देखें तो भैया तुरंत ही पत्तियां जमाएं और तुलसी की चाय पीनो। नीम की पत्तियां से डेंगू वायरस से लड़वे बारे जीवाणु रोधी गुण होते हैं जो नीम की पत्तियां में होते हैं। और भैया नीम की पत्तियां को उबालें, बिना ठंडो होवे के बाद छान लें, फिर दिन भर में कई बार नीम को पानी पिए। भैया डेंगू के घरेलू उपचार में नीम की पत्तियां सबसे ज्यादा कारगर उपाय में एक है। और भैया ये बरसात के मौसम में होवे वाली जो बीमारियां हैं बिनसे बचवे के लिए इन बचाव और सामान्य स्वास्थ्य सुझावों को पालन करवो बहुत जरूरी है। और संगे भैया अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, साफ सफाई बनाए रखें और समय रहते सावधानी बरतें ताकि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इन सभी बीमारियों से हम बच सकें। और भैया आप ध्यान रखें अपने संग में जो हम खेती किसानी करते हैं तो बिनके भैयन के घर में ढोर बछेरू रहते हैं, बिनको भी ध्यान रखें। अपने घर में छोटे बच्चा रहते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, बिनको भी ध्यान रखो जब मौसम में बहुत ज़रूरी है। भैया हम आगे चर्चा और करेंगे, अब सुनते हैं संदेश।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: भैया देखो चर्चा हो गई और संदेश भी सुन लिया भैया ने, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम भैया के लाने एक अच्छो सो लोकगीत सुनवा दें। तो भैया देखो जो लोकगीत लेकर आए जाएगा वह विविध केलकर ने।

भैया देखो, अबे अबे भैया ने लोगी सुनो। और अब हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से रोज कोई ना कोई ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिसे हमारे भैया लाभ लेते हैं। भैया आज जो हम भेंट वार्ता लेकर आए हैं वह को विषय है शिवपुरी जिले में विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल।

वार्ताकार हैं डॉक्टर नीरज कुशवाहा और इनसे बता रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। भैया जो भेंटवार्ता है वह पुनः प्रसारित है, तो सुनते हैं।

0: वानिकी मॉडल। ये मॉडल किस तरह से क्रियान्वित होंगे, कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं और कृषि वानिकी में इनका लाभ कैसे मिलेगा, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ आज कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के वैज्ञानिक श्री नीरज कुमार कुशवाहा जी हैं। सर, आपका सभी सुनने वालों के मध्य में स्वागत है। और जो विषय है शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल क्या है, थोड़ा सा विषय को बताएं, क्योंकि आम व्यक्ति को एकदम मॉडल सुनकर कुछ सैंपल लगते हैं कि वो है, या क्या कहना चाहते हैं आप?
1: कृषि वानिकी एक पद्धति है जिसमें कृषि के फसलों के साथ साथ हमें चारे के लिए, रेशे के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए या लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ी के लिए या फल वृक्षों को साथ में लेते हैं, जिससे कि कृषक बंधुओं को एक अतिरिक्त आय मिलती है। इसके साथ साथ जो हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में कृषक बंधु देते हैं, उस कुछ प्रजातियों के वृक्षों में ये प्राकृतिक रूप से ये व्यवस्था है कि वो नाइट्रोजन को जमीन में स्थलीकृत कर देते हैं। इसके अलावा जो कटाव हो रहा है हमारी मिट्टी का, उसको भी रोकते हैं। और जो टेम्परेचर, तापमान जो जमीन का गर्मियों के समय में बढ़ जाता है या सर्दियों के समय में जब पाले की समस्या आती है, उसको भी उसके रोकथाम के लिए। तो मॉडल्स का मतलब है कि किसान की ज़रूरत के आधार पर हम ऐसे मॉडल या इस प्रकार की पद्धति को वहाँ पर अपनाते हैं, लगाते हैं, जिससे कि उसको उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हों और उससे अतिरिक्त आय उसको उपलब्ध हो सके।
0: कुशवाहा जी, जैसे कोई किसान हमारा कृषि का काम कर रहा है, उसने रबी है तो गेहूं चना लगाया है, खरीफ है तो अन्य फसलें लगाई है, तो ये तो एक इस तरह आपकी बात से जाहिर हो रहा है कि रबी और खरीफ दोनों में समानांतर रूप से काम करेगा, तो कृषि अपनी जगह पे चलती रहेगी और ये अलग जगह पर, यानी कि खेत के किनारे या किसी दूसरे हिस्से में जहाँ आप अभी बताएंगे वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं, कुछ इसी तरह की बात है?
1: जी नहीं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना चाहूँगा। इसमें देखिए, तीन प्रकार से वृक्षारोपण किया जा सकता है। एक होता है कि जैसे मेड़ हमारी खाली पड़ी हुई है, हमको उनका उपयोग करना है, तो हम जो वृक्षारोपण ले रहे हैं उनको मेड़ों पर लेना है, तो मेड़ों से हमको आय होगी। इसके अलावा जो यदि हम आपकी खेती करना चाहते हैं वर्ष पर्यंत जो भी आप फसल लेना चाह रहे हैं, तो उसमें गैप देते हुए, मतलब एक अनुपात में जो उस वृक्ष को चाहिए उतनी स्पेस देते हुए, जिसके बीच में हमारी फसलें भी हो सकें वर्ष पर्यंत और वृक्ष खड़ा रहे, क्योंकि वृक्ष जो है वो बहुवर्षीय होता है
0: जी,
1: तो वो हमेशा लगा रहेगा। हमारी जो फसलें होती हैं वो मौसम की होती हैं, जैसे खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, तो वो हिसाब से कटती रहती हैं। उसमें जो हमारे कृषि के क्रियाकलाप हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन वृक्ष हमारे बहुवर्षीय होते हैं। एक होता है अगर आप डेंस प्लांटेशन कर रहे हैं, मतलब कि घना प्लांटेशन जिसके बीच में छाया बहुत अधिक होगी, तो उसमें कुछ खास किस्म की हम फसलें ही ले पाते हैं क्योंकि छाया अधिक होती है। ये तीन प्रकार से वृक्षारोपण हमको इसमें किया जाता है।
0: अब बताएं सर कि मॉडल के तौर पर कौन कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं जिनसे लाभ होगा और किसान को अतिरिक्त आमदनी।
1: जी, किसान बंधुओं को सबसे पहले कृषि वानिकी पद्धति अपनाने के पहले एक डीएनडी सर्वे कर लेना चाहिए। डीएनडी सर्वे से मतलब है डायग्नोसिस डिजाइन कर लेना चाहिए, मतलब कि वो अपनी जरूरतों को जो उसको चाहिए, इसके अलावा जो उसके संसाधन है, इनको देखते हुए ही वृक्षारोपण कृषि वानिकी का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, क्योंकि वृक्ष जो है एक बहुवर्षीय फसल है या घटक है, तो यदि आपने एक बार वृक्षारोपण कर दिया तो आप उसको हटाएंगे तो उसमें आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपका समय लगेगा। इसलिए इसमें वृक्ष की प्रजाति, वृक्ष का चयन और अपनी जरूरतें और संसाधनों का आकलन कर लेना चाहिए।
0: कौन कौन से वृक्षों को शिवपुरी जिले में प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, यानी कि प्रमुखता देनी चाहिए?
1: मैं घटक वाइज बताना चाहूंगा, यदि किसान भाई हमारे मेड़ों को अगर फेंसिंग के लिए परेशान है कि हम कैसे उसमें तार बारी लगाएं या चेनलिंग जाली लगाएं, मवेशियों का प्रकोप है, जंगली जानवरों का प्रकोप है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपनी मेड़ों पर यदि बांस की कतार उसके बीच में करौंदा लगाएं, क्योंकि हमारे शिवपुरी जिले में 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा का रकबा टमाटर के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, और जिसके लिए ज्यादातर वो स्टैगिंग जो मेथड होती है जिसमें दूसरी तरफ दोनों तरफ आप बांस बल्ली का प्रयोग करके तार के सहारे

0: से उसको खड़ा करते हैं टमाटर को, तो वो हर तीसरे वर्ष तक, वो चौथे वर्ष तक वो बांस खराब हो जाता है। और जितना भी बांस हमारे शिवपुरी जिले में आ रहा है वो विभिन्न जिलों से आ रहा है, जैसे बालाघाट, सिवनी, सागर, दमोह, इन जिलों से आ रहा है। तो उतना उत्पादन बांस का हमारे शिवपुरी जिले में हो नहीं रहा है और जरूरत ज्यादा है। अगर कृषक भाई हमारे मेड़ों पर, अपने खेत की मेड़ों पर बांस की कतार लगा लेते हैं, बीच में करौंदा लगा देते हैं, तो पांचवें वर्ष में वो हर वर्ष अपना बांस का उत्पादन ले सकते हैं। काटते जाएंगे उनको बांस बल्लियां प्राप्त होती जाएंगी
1: और बेचते भी जाएंगे।
0: जी हाँ, यदि जरूरत उनकी है तो वो भी पूरी हो जाएगी, अगर वो टमाटर के उत्पादक हैं तो। यदि नहीं है तो वो अपने किसी किसान बंधु को जिले में कहीं भी बेच सकते हैं, जिसे दोनों तरफा फायदा होगा। आपकी बागड़ भी तैयार हो जाएगी, आपको एक अतिरिक्त आय भी मिल जाएगी, और जो किसान बंधु टमाटर की खेती करता है उसको दूर से लाने में जो अतिरिक्त पैसा परिवहन में लगता है वो कम लगेगा, नहीं के बराबर लगेगा, हो सकता है वो आपके गांव का ही।
1: और करौंदे से भी आपको इनकम बीच में,
0: जी करौंदे से भी आपको मिलेगी। इसके अलावा निचले स्तर पे अगर आप पेरिनियल ग्रासेस, घास लगा सके तो वो आपको चारे के लिए भी आपके मवेशियों को प्राप्त हो सकती है, जैसे कि हाइब्रिड नेपियर बाजरा लगा सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा मेड़ों पर आप अरहर भी बो सकते हैं, तो जिससे कि आपकी एक ऐसी सुंदर जीवित बागड़, जिसको लाइव फेंस कहते हैं, वो तैयार हो जाएगी, तो मवेशियों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप खेत के बीच में वृक्षारोपण करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वर्ष पर्यंत तो उस पर खेती करता रहूं और वृक्षों से अगर आमदनी होती रहे, तो उसके लिए यदि आप फलदार वृक्ष का चयन करते हैं तो कृषि शिवपुरी के परिवेश में आप सहजन का वृक्षारोपण कर सकते हैं, कटहल का कर सकते हैं, आम, सीताफल, अनार, आंवला, नींबू, बेर, बेल, ये सारे आप वृक्षारोपण यहाँ पर कर सकते हैं। बस विशेषतः आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जो वृक्षारोपण की जो डिस्टेंस है, पेड़ से पेड़ की दूरी हमको उत्तर से दक्षिण की ओर रखनी है, और कतार से कतार की दूरी का ध्यान हमको पूरब से पश्चिम की ओर रखना है, जिससे कि जो प्रकाश है वो बराबर मात्रा में आपके फसलों को और साथ ही साथ वृक्षों को मिलता रहे, और उनकी जो दूरी है, जो आपका इम्प्लीमेंट है यानी आपके कल्टीवेटर है या सीड ड्रिल है या हैरो है, जो भी आप उसमें उपयोग में लेते हैं, उससे 2 या 3 फीट आपको ज्यादा रखनी है कतार से कतार के बीच और वृक्ष से वृक्ष के बीच, ताकि आप जो भी आपके कृषि कलाप क्रियाकलाप हैं वो निरंतर आप उसमें कर सकें और वृक्षों को हानि ना हो।
1: आपने एक उदाहरण ये दिया और एक बागड़ का दिया, तीसरा आपने बताया था कि आप सघन अगर वृक्षारोपण करना चाहें।
0: यदि आप सघन वृक्षारोपण करना चाहते हैं, अब वो फलदार वृक्ष के लिए भी हो सकता है, जल लकड़ी के लिए भी हो सकता है, तो उसमें क्योंकि जो कैनोपी है, छादन है जो वृक्ष का, ऊपर की छाया यदि ज्यादा हो जाती है और वो 3-4 वर्ष में ज्यादा हो ही जाएगी, तो उसमें हम सिर्फ ऐसी फसलों का चयन कर पाएंगे जो कि जो छाया है उसको प्रिय हो, जैसे कि हमारी हल्दी है, अदरक है, कुछ हद तक हमारी आलू है, तो ये हम वहाँ पर उनके बीच में ले सकते हैं।
1: और वो जो सघन वृक्षारोपण के वृक्ष होंगे वो कौन से होंगे?
0: वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, आप अगर फलदार वृक्ष चाहें तो भी हो सकते हैं, और यदि आप वानिकी वृक्ष चाहें कि जैसे खमेर जो जल्दी वृद्धि करता है, सागौन भी आप ले सकते हैं, ये आप वहाँ पर शिवपुरी के दृष्टिकोण से आसानी से ले सकते हैं।
1: आपने अपनी बातचीत में बताया था कि हमें उन पेड़ों से फल भी मिलेंगे और लकड़ी भी मिलेगी, लकड़ी की बात पर वन विभाग का नियम आ जाता है कि आप पेड़ को काट नहीं सकते, तो इस तरह के कोई पेड़ में अलग अलग विभाजन किया गया है कि इन पेड़ों को काटा जा सकता है और इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता?
0: जी नहीं, भारत में 2014 में एक पॉलिसी आई थी, कृषि वानिकी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत यदि आप रजिस्ट्रेशन DFO के यहाँ कर देते हैं कि मैंने इतने वृक्षों का, इस प्रजाति का वृक्षारोपण किया है, तो आप उसको काटने के लिए फ्री हैं, और आपको उसको बस ये बताना होता है कि हमने वहाँ काट दिया है, और वो जो लकड़ी अगर आप अच्छी क्वालिटी की है, जैसे सागौन है या खमेर है, तो उसका जो बिकने का या बेचने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है, आप उसको डायरेक्ट बाजार में नहीं बेच सकते हैं, वो आप डिपो में देंगे और डिपो के द्वारा वन विभाग वाले उसको बेचते हैं, उसका कुछ कमीशन या परसेंटेज वो लेते हैं और बाकी की रकम आपको दे दी जाती
1: है। यानी कि वो भी काटी जा सकती है, निश्चित प्रक्रिया की जाए, DFO क्या उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सके, तो फिर हम उस इमारती लकड़ी को काट सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं।
0: जी
1: कुशवाहा साहब, आपने एक तरह से तीन तरह के वृक्ष बताए शिवपुरी में मॉडल के तौर पर। एक तो बागड़ के लिए, जिसमें खास तौर पर आपने बांस का जिक्र किया, बीच में करौंदे का जिक्र किया। फसल भी लेनी है और पौधे पेड़ भी लगाने हैं तो फिर आम, अनार, इस तरह के आपने संतरा लगाया जा सकता है। और सघन है, सघन में कोई भी वृक्ष लगाया जा सकता है, खासतौर पर सागवान है, आम है, नींबू है, इस तरह के लगाए जा सकते हैं। काटने की प्रक्रिया अलग अलग है कि सरकार के, मतलब आपको वन विभाग, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को आपको ये सूचना देनी है, फिर आप उसे काट सकते हैं। इसके अलावा परिवेश बहुत बदल रहा है। साइंटिस्ट, खासतौर पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं और नए नए तरह के प्रयोग कर हर जगह पर हर चीज उत्पादन के लिए मदद कर रहे हैं। तो शिवपुरी जिले में जो वृक्ष आपने बताए हैं वो तो सार्वभौमिक हैं, सबको पता है। लेकिन अगर संतरा, जिसका नाम शिवपुरी जिले में उतना नहीं है जो दूसरे इलाके की फसल है, तो इस तरह के पौधे भी क्या शिवपुरी में बढ़ाए जा सकते हैं, उनका लाभ लिया जा सकता है?
0: जी, संतरे को छोड़कर साइट्रस कुल के ज्यादातर पौधे या पेड़ या वृक्ष हम कृषि शिवपुरी दृष्टिकोण में ले सकते हैं। लेकिन संतरा क्या है, उसको थोड़े आर्द्रता की जरूरत होती है क्योंकि उसमें मिठास आने के लिए। और उसकी जगह आप किन्नो ले सकते हैं, मौसम्मी ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, लेकिन संतरे की रिकमेंडेशन अभी शिवपुरी जिले के लिए नहीं है क्योंकि उसमें वो मिठास नहीं हो पाती है यहाँ के परिवेश में। इसलिए मैं भी उसके लिए
1: अमरूद
0: बहुत अच्छा होता है। इवन ग्वालियर 27 एक प्रजाति है जो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई है, वो बहुत अच्छी, स्वादिष्ट भी है और उसका फल का जो साइज है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि यदि अमरूद पर कोई जाना चाहे तो ग्वालियर 27 वैरायटी शिवपुरी जिले के लिए बहुत अच्छी।
1: तो नीरज कुमार कुशवाहा जी, आप हमारे किसानों के बीच में रहे और शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल, इस विषय पर एक अच्छी बातचीत हुई और एक अलग हटकर बातचीत हुई कि हम खेती की बहुत सारी बातें करते हैं, रबी की, खरीफ की बातें करते हैं, लेकिन वानिकी पर एक अलग तरह का प्रयोग कर हमारे किसान दुगनी इनकम कर सकते हैं, अपनी अतिरिक्त आय बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक बात और होगी, पेड़ों से जो पत्ते गिरेंगे वो खाद का भी काम करेंगे।
0: जी, ह्यूमस भी बढ़ेगा, उससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और आपके जो पत्ते वगैरह और निकल रहे हैं, यदि आप वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद बना रहे हैं या नाडेप बना रहे हैं, तो उसमें जो आपको मटेरियल लगेगा वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्द हवाएं चलती हैं, तो अगर आपके पेड़ लगे हुए हैं मेड़ों के चारों ओर, तो सर्द हवाओं से भी बचता है, आपकी फसल को बचाता है, जिसको हम विंड ब्रेक कहते हैं। और यदि कतारें लगी हुई हैं मेड़ें, अगर आपकी काफ़ी चौड़ी हैं, 3-4 मीटर की मेड़ है, तो आप उसमें 2-3 कतार अगर वृक्षों की लगा देते हैं तो और भी अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, जिसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं,
1: यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो बहुत अच्छी और सारगर्भित बातचीत हुई, कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान जो उसको सुन रहे हैं वो अवश्य फायदा लेंगे और जरूरत पड़ने पर कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया जा सकता है, सर
0: जी बिल्कुल
1: संपर्क किया जा सकता है, ताकि आप अतिरिक्त आमदनी बढ़ा सकें। श्री नीरज कुमार कुशवाहा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: वही देखो, अभी हम भेंटवार्ता सुन रहे थे, जाको विषय है तो शिवपुरी जिले में विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल। वार्ताकार थे डॉक्टर नीरज कुशवाहा और इनसे बता रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। भैया, ये जो भेंटवार्ता हती वह पुनः प्रसारित थी। वह देखो कितने अच्छी जानकारी दी हमारे डॉक्टर साहब ने कि हमारे भैया ने सुनी हुई है और इनसे भी लाभ जरूर लेंगे। भैया देखो, जल सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है। जल को उपयोग सही तरीका से करें। और देखो भैया, हम भोजन के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। जय किला ने पानी को, जल को संरक्षण कर वो बहुत जरूरी है। भैया, बूंद बूंद पानी हमारे लाने बहुत कीमती है। अपने देश की बढ़ती भई जनसंख्या और बढ़त भय उद्योग स्तर ने पानी के संकट को और भी गंभीर बना दो है। तो भैया, अबे से ही हमें जाके लाने जागरूक होने होएगो और पानी की बचत हम कर सकत हैं और पानी कम से कम मात्रा में उपयोग हम कर सकत हैं। भैया, ऐसे ही व्यर्थ पानी को ना बहाएं, जल को संग्रहण करें। और भैया, जल संग्रहण करवे के लाने जो हमारे पास विधियां हैं, आधुनिक विधियां हैं, वह को मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को बर्बाद होवे से बचाना है। और बाय भविष्य के लाने घरेलू और कृषि या भूजल स्तर को बढ़ावे के लाने इस्तेमाल करना है। भैया, जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग और संरक्षण की प्रमुख आधुनिक तकनीकी जोन है, जैसे छत आधारित वर्षा जल संचयन। भैया, घरों या इमारतों की छतों पर इकट्ठा होवे वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए फिल्टर करके भूमिगत टैंकर में जमा करो जाते जाए, सीधे बोरवेल सोक पिट में भेजकर भूजल को रिचार्ज करो जाते। और दूसरा है भूजल पुनर्भरण, जाके तहत विभिन्न तकनीकों जैसे इन्फल्टेशन पिट्स और ट्रेच और रिचार्ज सॉफ्ट के माध्यम से बारिश के सतही पानी को जमीन के अंदर सोखने में मदद करी जाते, जैसे घटते जल स्तर को सुधारो जा सके। और सतही अपवाह संचयन, जैसे भैया बारिश के पानी को जो मैदानों या ढलानों से बहकर बेकार चलो जाते हैं, बाय चेक डैम, खेत तालाब या छोटे बांध बनाकर रोको जा सकत है, बिना संग्रहित करो जाते हैं। और है स्मार्ट स्वचालित प्रणालियां, भैया आधुनिक तकनीक में सेंसर और ऑटोमेटिक वाल्व को उपयोग करो जाते हैं, जो मौसम को पूर्वानुमान देखकर टैंकों के जलस्तरों को नियंत्रित करते हैं और जरूरत के अनुसार पानी को वितरण करते हैं। और है आधुनिक सिंचाई तकनीकें, भैया अपने कृषि में जल संरक्षण के लाने ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई विधियन को उपयोग करो जाते हैं, जैसे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचत है और वाष्पीकरण से होवे वाली बर्बादी रुकत है। भैया जल की बचत करें, जल को संग्रहण करें और यह भविष्य में पानी की जरूरत को पूरा करवो और जल की कमी से निपटने में स्थायी समाधान भूजल में सुधार होते हैं, लगातार घटते जल स्तर को रोकवे में मदद करते हैं। तो भैया जल को संरक्षण करवो बहुत ज़रूरी है। और अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने भयन को एक और अच्छो सुलोक गीत सुनवा दें। तो भैया जब सुनत है

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ट का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर ख़त्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
2: तो क्या सभी मेज़ के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
3: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
2: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
3: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
2: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
3: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
2: बाय बाय। बैरा।
4: यस मैडम, कमिंग। क्या खाइएगा?
2: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
4: ओके मैडम।
2: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
5: हेलो सर।
6: यस मैडम।
2: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
6: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: देखिए, ये आपके यहाँ का मेनू है। मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मेनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
6: ओह, थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं। मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मेनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
2: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
6: ओह, वंडरफुल वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके।
2: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
6: यस।
2: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें। बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
6: ओह, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
2: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मेनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मेनू भिजवा दूंगी और शाम के मेनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
6: ठीक है ठीक है।
2: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
6: मेज 12।
2: तो 12 यह है, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15 मेनू कार्ड, ठीक है ना?
6: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
2: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से इतनी मेहनत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुता रहता है। काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। वॉल्टर,
7: सारा अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया मैं तो सारा सब कुछ।

0: जलकर खाक हो गया।
1: अब इस तरह रोने से क्या होगा वॉल्टर, हिम्मत न थारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
0: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
1: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वॉल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
0: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
1: देखो वॉल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
0: कहो।
1: देखो वॉल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूँगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
0: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं, और 10 महीने तक तुमसे अलग नहीं सारा, ये नहीं हो सकता।
1: वॉल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ, और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो, सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
0: हा?
1: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
0: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
1: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वॉल्टर। और एक बात और भी है वॉल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
0: सारा
1: वॉल्टर, आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, और वॉल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो, पता नहीं कितना बदल गया होगा वॉल्टर।

0: आपने बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
1: जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: ओ माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू पनीर। ओह वॉल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो तुम्हारी मनपसंद सब्जी में उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वॉल्टर कल ज़रूर आ जाना। वॉल्टर तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वॉल्टर कल ज़रूर आना, ज़रूर आना, ज़रूर आना।
1: मेम साहब, आपका खाना
0: रख दो यहाँ। हाँ, आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
1: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
0: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
1: ओके, जैसा आप कहोगे।
0: ओह वॉल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वॉल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मनपसंद सब्जी खाते। वॉल्टर, कौन है?
2: सारा।
0: वॉल्टर, ओह वॉल्टर, तुम सच ही वॉल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
3: यस मैडम।
0: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
3: ओके मैडम।
4: सारा।
0: वॉल्टर, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
4: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
0: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
4: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
4: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
0: हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
4: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
0: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया?
4: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
0: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वॉल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
5: मेनू कार्ड हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ट का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

अब सुनिए रूप कुमार राठौर के आवाज में अग्निपथ फिल्म का गीत। अजय अतुल का संगीत है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीतकार मयूरपुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में

0: आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
6: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान

0: को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए येसुदास की आवाज में सुनैना फिल्म का गीत, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने सुनैना फिल्म में यशोदास को सुना। अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में प्यासा सावन फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगली पेशकश अनुरोध फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: जी हाँ, आज जिक्र है अभिनेता मोतीलाल का।
1: दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे

0: क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थीं। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की। इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: राम प्रसाद।
1: राम प्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनिंदा हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है,

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ही इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
2: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
2: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
2: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो। क्या हुआ?
3: सॉरी।
2: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
2: अच्छा?
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960, बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गाँव छोड़ना पड़ा था।

0: लिया तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख, मेरा रोम रोम कांपता है।
1: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को एक्चुअली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुसी तमाशा क्या क्या होता है।
2: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

Ganhei!

0: उफ, ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।
1: खोया।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों, अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाते।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।